विच हैपेंस. जी हाँ, सताक्षी के साथ इसी शो को आप इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग की बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा मज़ा. वैसे जिंदगी ना हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर देती है. पहले जब मैं छोटी ये तो नहीं थी एग्जैक्टली, जब मैं कॉलेज में थी हाँ, तो मैं एक चीज़ सोचा करती थी कि यार अपनी ज़िंदगी को ना मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी और इसका हर एक काम मैं अपने हिसाब से करूंगी. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. लाइफ ने, मतलब मैंने लाइफ को लिखा अपनी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से की लेकिन हर बार नहीं कर पाई. कई बार लाइफ ने मेरी प्लानिंग मुझसे कहीं ज़्यादा आगे निकल कर की. बहुत तकलीफ हुई उस वक्त क्योंकि यार मैंने तो कुछ और सोचा था और ये कुछ और ही हो रहा है ज़िंदगी में. ऑब्वियसली इंसान का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है जो सोचा ना हो, जब वो होना शुरू होता है तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं. मैं भी हुई थी. लेकिन फिर कुछ सालों बाद ये समझ में आया कि यार ज़िंदगी है और हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है ना. तो जैसे ज़िंदगी में कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, वैसे ही कभी कभी फैमिली में भी हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती. ये उनसे कह रही हूँ जिन्हें अक्सर अपने ही परिवार से शिकायतें रहती हैं. तो बस थोड़ा सा समझिए ज़िंदगी को भी और फैमिली को भी, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस. आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM.

सो इट हैपेंस में रेडियो प्रस्थानी पर आप फिर से हैं सताक्षी के साथ। जी हाँ, ये वक्त आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि कुछ तो घर से निकलने की सोच रहे हैं, कुछ अभी तक थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं और कुछ अपने घर से निकल चुके हैं। तो जो लोग इस वक्त अपनी गाड़ियों में निकल चुके हैं, मेट्रो में हैं या फिर ऑफिस की डेस्क पर बैठकर लॉग इन कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से आप वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल डे। वैसे आज जब आप अपने काम की शुरुआत करें तो किसी कॉम्पिटिशन का प्रेशर मत रखिएगा, बल्कि इस हैप्पीनेस के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करिएगा कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। काम को बोझ मत बनाइए, उसे एक खेल की तरह एंजॉय कीजिए। और आपके इसी सफर को और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए अभी मैं प्ले करती हूँ आपके लिए एक और ट्रैक। एंजॉय कीजिए और कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

इट हैपेंस में चलिए अभी बात करते हैं महंगी चीजों पर. हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लाइफ में उन चीजों को जो बहुत कॉस्टली होती हैं, एंटीक होती हैं या महंगी होती हैं. तो अब जब महंगी चीजों का जिक्र छिड़ा है तो लेट मी नो कि क्या महंगी चादर पर नींद अच्छी आती है, क्या महंगे कप में आपको कॉफी या चाय ज्यादा टेस्टी लगती है, या महंगे घर में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. नहीं ना, ठीक इसी तरह से लाइफ में महंगा इंसान है ना, ब्रांडेड कपड़ों जैसा, ब्रांडेड क्रॉकरी जैसा हो सकता है, लेकिन अंदर से वो इंसान वाकई महंगा होगा कि नहीं आप नहीं जानते. वो इंसान दिल से सच्चा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, ये तो आप नहीं जान सकते. तो इसलिए लोगों के हैसियत को देखकर या उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर जो लोग किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, मैंने देखा है उनको सबसे ज्यादा पछताते हुए, क्योंकि आप किसी की शक्ल से उसके दिल और उसकी अक्ल का अंदाजा नहीं लगा सकते. हाँ चलिए, फिलहाल उनके नाम है ये ट्रैक जो बाल बाल बच गए हैं ऐसे रिश्तों में बंधने से. इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ यूं ही इंजॉय करते रहिए. इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर.

हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शेयरिंग में भरोसा करते हैं, जो चीजों को शेयर करना बांटना चाहते हैं और बांटते हैं, लेकिन उनसे भी एक सवाल है कि क्या आप यूं तो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा दोस्त है जिसे आप लाइफ में कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते, आप उसे किसी के साथ नहीं बांट सकते, और उसके लिए आपका दिल हमेशा यही सुनना चाहता है कि ये सिर्फ मेरा है। होता है ना एक बंदा ऐसा हम सब की जिंदगी में जिसके साथ हम अपनी सारी परेशानियां बेझिझक बांट लेते हैं, सारे अल्फाज बेझिझक शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब बॉस बात आती है उसको किसी के साथ बांटने की, फिर तो ना है जी, है ना। तो बस उस शख्स को जरूर बताइए कि वो आपके लिए कितना कीमती है, और मेरे साथ एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपन्स। और हाँ, उसे जरूर बोलिए भाई गुड मॉर्निंग, क्योंकि शायद वो भी आपके गुड मॉर्निंग का वेट कर रहा हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

अक्सर हम खुद से एक बहाना बनाते हैं कि यार मुझे गिटार सीखना था, मुझे पेंटिंग करनी थी, लेकिन क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं है, अब तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। आज ना मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। देखिए, आपके पास पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, राइट? तो 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट अपने सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग कम कर दीजिए, और वो 15 मिनट अपनी उस हॉबी को दीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आप उस चीज में कितने माहिर हो जाएंगे। यू नो, खुद को समय देना सीखिए, क्योंकि आप खुद की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, VIP, VVIP सब कुछ है। इसी हाई एनर्जी के साथ आइए आपको आगे लेकर चलती हूँ, एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

फ्रेंड्स, ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज फिर से हमने अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत करने की कोशिश की, तो बस ये शुरुआत, इस शुरुआत पर मेरा आपका साथ कल के मॉर्निंग भी जारी रहेगा, लेकिन अब ये पल जो है ये आगे बढ़ चुके हैं और अब ये पल आपसे कह रहे हैं कि आपको आपकी जिंदगी जीने का टाइम हो गया है। तो आप इंजॉय कीजिए अपने इस दिन को, अपने सपनों को और अपने गोल्स को। मैं लेती हूँ आज के सफर से विदा। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने 101 एम ते जी अच्छे संदेश शौलक दे नाल सुबान चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की करना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बरसाने 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते bersaniandbersani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी अपनाओ पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहो। तां फटाफट दे नाल चक लो अपना फोन ते करो साडे नाल गल्लां बातां। मैं हुणे वापस आउंदी हां, तुहाडे सुनेहां दा इंतजार लगातार मैनूं जारी है। हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समय सोहणे जिही गीत सुणो।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो कुछ फिल्मां ना रिलीज होने तो बाद कई साल भी उन्निया ही सदा बार रहिंदियां ने जिन्निया की रिलीज होने वेले सी उन्नी ही फ्रैशनैस बनी रहती है। तो कुछ फिल्मां अपनी कुछ सीन्स दे करके ते कुछ अपने ब्लॉकबस्टर गाणियां दी वजह दे नाल दिनां दे विच पास जांदियां हुंदियां ने कि हर दिल दे विच हमेशा उह रहिंदियां ही रहिंदियां ने। 45 साल पहला एक अजिही एक फिल्म बॉक्स ऑफिस ते रिलीज़ होई सी। फिल्म दा एक गाणा दोस्ती दा मिसाल सी। अज भी दोस्त इस गाने नूं पार्टी फंक्शन से गुनगुनाते हैं ने। सब तो दिलचस्प गल यह हैगी है कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान ना हीरोइन रोंदी हुई सैट छड़ के चली गई सी। हीरो ने किसी तरह गाना पूरा किया, गाना ब्लॉकबस्टर हो गया, फिल्म सुपरहिट हो गई। तो सोचा कि अज तुहानूं क्यों ना इस फिल्म बारे दसा। उस बारे दसदी हां, पहला ही गीत सुनो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 FM ते जी आरचे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो, हजारां दी भीड़ दे विच ना कोलकाता स्टेडियम विच फिल्म दा एक गाना फिल्माया जांदा हैगा। सारियां तैयारियां हो चुकियां सी, इस विचकार हीरोइन रोन लगती है, तां फिर की हुंदा है? इस तों बाद दी तां पूरी गल है जो तुहानूं दसणी है। देखो, सुपरस्टार अमिताभ नूं तो देखिया नहीं गया, तो कोले जाके इसकी वजह पूछी। वजह जान के प्रोड्यूसर नु बुलाया ते हीरोइन नु उसे समय मुंबई भेजण दा अरेंजमेंट करन नु कहा। जी हां, असीं गल कर रहे 1981 विच रिलीज होई याराना फिल्म थी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म सी जिसका निर्देशन राकेश कुमार ने किया। फिल्म विच अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा अते कादर खान लीड रोल दे विच सी। फिल्म दा प्लॉट महाभारत दे करण ते दुर्योधन दी दोस्ती वागा जाही उस तरीके दे नाल दिखाया गया।

0: ਐਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसे बने हुए हो। देखो याराना फिल्म दी स्टोरी हैगी है जिहड़ी उह ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, जद के स्क्रीन प्ले विजय कौल ने लिखा हैगा। डायलॉग कादर खान दे सी, प्रोड्यूसर एम ए नाठियावाला सी, गीतकार अनजान, जद के संगीतकार राकेश राजेश रोशन सी। फिल्म दे कोल 7 गाने रखे गए सी। इन्हां गाणियां विच छूकर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना, मतलब बहुत ज्यादा हिट होया सी। तीनों गाने सदाबहार है कि नहीं। इस फिल्म दे लई अमजद खान नू बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। छूकर मेरे मन को गाना रविंद्रनाथ टैगोर की एक कंपोजिशन तो लिया गया सीगा। इस बारे होर भी तुहानू दस्सदे आं, पर पहले गीत सुन लो।

0: सौ गल बन जी तू पक्के तौर ते साडा हो जाएगी।
1: हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन ओवानी अमते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो निर्देशक राकेश कुमार दी पहली फिल्म खून पसीना सी ते प्रकाश मेहरा दे बैनर तले ए फिल्म बनाई गई सी। प्रोड्यूसर एम ए नाठियालवाला ते डायरेक्टर राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन दे नाल एक फिल्म बनाउण दा प्लान किया सी। दोनों अमिताभ नाल मिले पर उन्हां दे कोल डेट्स नहीं सी। अमिताभ बच्चन ने अपनी डायरी दिखाई सिर्फ सुबह 7 बजे तो 8 बजे तक का समा खाली सी। डायरेक्टर ने सिर्फ 1 घंटे का समा ले लिया। इस तरह याराना ते काम शुरू किया गया। अगे दी की कहानी है क्या वो है जी सब तो ज्यादा इंटरेस्टिंग जिस बारे तुहानू दसदे आ पर पहला सुन लो तुसी एक गीत।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Better together. Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो 1 जुलाई 1977 विच ना फिल्म लॉन्च हुई सी। फिल्म दा शुरुआत विच टाइटल यार मेरा सी। इस विच का डायरेक्टर अमिताभ दे नाल मिस्टर नटवर लाल बना रहे सी। दो अते तीन वार मूव दो पांच मूवी भी कंप्लीट हो गई सी। इन्हां फिल्मां दे निर्माता अमिताभ तो पहला ही डेट्स ले चुके सी। याराना मूवी विच अमिताभ दे ऑपोजिट नीतू सिंह नूं कास्ट कीता गया सी। दोवां दी चंगी दोस्ती सी। अमिताभ दे कोल बहुत घट समय होण दे चलदे फिल्म नूं पूरा होना भी लंबा समा लग रहा सी। इन्ना लंबा समा लग्या कि नीतू सिंह दी ऋषि कपूर दे नाल एंगेजमेंट तक हो गई सी। इसे तो बाद दी पूरी कहानी है कि है जिहड़ी मैं तुहानू एक एक करके दसदी आं, पर पहला एगी सुन लो।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी। आप जे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। हुण देखो, नीतू सिंह ते अमिताभ बच्चन की कहानी दस रहे सी यारा मूवी की। नीतू सिंह ने नवीं फिल्मा साइन करना बंद कर दिता सी। दोवां दी ब्याह दीआं तैयारियां चल रही सी। फिल्म का एक गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना कोलकाता के स्टेडियम विच शूट होया सी। जद इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही सी तां ऋषि कपूर की याद विच नीतू सिंह रो रही सी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह नाल उन्हां दी गल ऋषि कपूर दे नाल नहीं हो पा रही सी। उधर मुंबई विच ऋषि कपूर परेशान सी। नीतू सिंह नूं रोंदा देख के अमिताभ ने ना वजह पूछी। नीतू ने कहा है कि वह मुंबई वापस जाना चाहती है। अमिताभ ने प्रोड्यूसर नूं बुलाया ते नीतू सिंह दी मुंबई दी फ्लाइट टिकट बुक करन लई कहा। अमिताभ ने नीतू दे बिना गाने ते कल्ले ही परफॉर्म कीता। यही वजह है कि गाने तो पहले हिस्से विच नीतू सिंह नजर आउंदी है, बाद विच नहीं। ये गाना बेहद बेहद पॉपुलर होया सी।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो फिल्म दे कई सीन्स विच नीतू सिंह दी डबिंग रेखा ने भी की है कि अमिताभ याराना फिल्म दे मुंबई रीजन दे डिस्ट्रीब्यूटर सीगे, उन्होंने उन्हीं दिन ना सिलसिला दी डबिंग भी हो रही सी पर वो टाल दे रहे। यश चोपड़ा नु जद असली वजह पता चली तो नाराज हुए। डायरेक्टर राकेश कुमार दे नाल अमिताभ बच्चन दी 2 और 2 5 फ्लॉप हो चुकी सी। अजे विच अमिताभ हर हाल विच याराना नु हिट करना चाहते सीगे। फिल्म दे कई सीन्स फिर तो शूट भी किते गए सी। सारा जमाना हसीनों का दीवाना गाने नु कोलकाता दे स्टेडियम विच फिल्मों ताई थी अमिताभ बच्चन दा सी। नीतू सिंह गाना छड़ के मुंबई लई निकली, जदों होटल जा रही सी तां रास्ते विच कार खराब हो गई, भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अमिताभ नीतू नू कार तो बाहर निकलने दी रिक्वेस्ट की थी पर दोवें कार विचों नहीं निकले। इस वजह नाल भीड़ नू भी अंदाजा हो गया कि कार खराब हो गई है। फिर किसी भीड़ ने कार नू धक्का लगा के होटल तक पहुंचाया। अमिताभ बच्चन फैंस नू प्यार ता शुरू तो करते ही रह गए ने ते उन्हां दे प्यार नू फैंस भी कदे नहीं भुलांदे।
1: मुंडा साधुआं दा

जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रस्तानी वन सन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। खैर वेलकम तो मैं थोड़ा करता है पर हूं वेला हो चुका है थोड़े तो टाटा बाय बाय कहण का थोड़े तो इजाजत लैण का। यार उन्हां दी थोड़ी जी गल होर कर दिनी हां मैं। अमिताभ ने ना सारा जमाना गाने विच एक खास तरह दे इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी 1979 यानी कि 1979 विच अमेरिकन फिल्म द इलैक्ट्रिक हार्समैन विच रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी ना उस तरह थी। उधर ए आइडिया प्रोड्यूसर दे मन विच आया लाइट नू ऑन ऑफ करन दा बटन अमिताभ दे हाथ विच सीगा। 2.25 दे बजट विच बनी इस फिल्म ने 3.5 करोड़ दा बिजनेस कीता सी। एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई सी ते यही कहानी सी कि इस फिल्म दे विच जिहड़ा गाने दे विच नीतू सिंह नजर नहीं आई बात दे विच है ना। कहानी बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी तुसी अपनी कहानियां जरूर दस रहा करो साथ नाल जुड़ते रहा करो। रेडियो ब्रिसोनी वन सन वन एम साथ फेसबुक पेज है जी तो brisoni@brisoni.com साथ ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाना है अपना साथ नाल गल्लबात जरूर करते रहा करो। बाकी कल करते मुलाकात रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th of August 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
7: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
6: ऐसा क्या खास है वहाँ?
7: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
6: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
7: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: मेरा।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम जॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम जॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बाद राहत फतेह अली खान विद हिज सन शहजमान अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट परफॉर्मिंग हिज ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एंड कव्वाली हिट्स 23rd जुलाई 2026 एट ब्रिस्बेन सेंट्रल मेन ऑडिटोरियम Your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गए हैं इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, मिड वीक आ गया है, कैसा फील कर रहे हैं आप। और ये ठंडक कहीं आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही, कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हो जिनको ठंड पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तो विंटर्स का जो है वो वक्त है और जिन लोगों को ठंड पसंद है ये उनका वक्त है। लेकिन डोंट वरी, थोड़े टाइम में स्प्रिंग आ जाएगा, फिर से समर्स आ जाएंगे, फिर से मजे से वही सब माहौल जो है वो बन जाएगा। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा नहीं नहीं हमें विंटर्स पसंद है, बट देन कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं निव्या शर्मा हमें विंटर्स नहीं, हमें समर्स ही पसंद है। हल्का फुल्का कहीं जाना है तो हल्का फुल्का पैक करना पड़ता है, कुछ नहीं। मतलब विंटर्स में कहीं जाना ना सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग जो है वो सबसे खतरनाक हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू पैक सो मच लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। बट समर्स में आप लाइट पैक करो एंड यू कैन लिटरली गो एनीवेयर। जी हाँ, थोड़े से लगेज के साथ। सो या, विंटर्स के कुछ तो नुकसान है और समर्स के कुछ तो फायदे हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों, इसी के साथ बिना देर किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही है, आपकी निव्या शर्मा की गप्पे शुरू हो गई तो वो खत्म होने का तो नाम लेंगी नहीं। तो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर जरा सीधा पहले आपको लेकर चलते हैं उस हेल्दी रिचुअल की तरफ, जो कि आपको काफी अच्छे से प्रोडक्टिव काम और हेल्दी, मेंटली हेल्दी रखने में हेल्प करता है। डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की बात हो रही है, सबसे पहले करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते हुए एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं, क्योंकि अच्छा गाना हमें और ज़्यादा अच्छा से फील करता है, राइट। मतलब ये जितनी भी जद्दोजहद होती है काम की, कॉरपोरेट वर्ल्ड की मशक्कत, दुनिया भर का केओस, अच्छा सा गाना सुनने को मिल जाए ना तो रिचार्ज जो है वो फील होता है। और वैसे ही आपको होने वाला है, बिकॉज मैं आपको प्यार की कश्ती में लेकर जाने वाली हूँ।

जहाँ दोस्तों आप लोग बोलोगे कि वाह निव्या वाह, आज तो बड़े ही मजेदार से ऐसे गाने प्ले कर रही हो कि मन कर रहा है बस उठकर झूमना शुरू कर दें, डांस करना शुरू कर दें, जो भी कर रहे हैं उसको छोड़कर बस ठुमकना शुरू कर दें, झूमना शुरू कर दें। वेल ऑफ कोर्स कुछ गाने ऐसे ही हैं और बॉलीवुड ने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, सो आई गेस दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जरा बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, क्या कह रहा है मौसम। वेल वेल वेल, 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 20.2 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 20.4 डिग्री सेल्सियस के करीब, जो कि पिछले दो दिन के मुकाबले बेहतर है। जी हाँ, बिकॉज पिछले से पिछले कल ये 17 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था और वो भी हम दिन की बात कर रहे थे। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर नो चांसेस ऑफ बारिश, मतलब 40% बताया था लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही, बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है नॉर्थ ब्रिस्बेन की तरफ, बट वो भी उसके अलावा मुझे सब कुछ यहाँ सही नजर आ रहा है। इसी के साथ दिन की बात कर ली तो अब रात की भी कर ली जाए, और रात को 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में आप गिरावट देख पाएंगे, जो कि कल के मुकाबले ठंडा होने वाला है। सो या रात के मुकाबले, पिछली रात के मुकाबले ठंडा होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, ये तो है आज की बात। अब थर्सडे की यानी कि कल की बात कर लेते हैं, तो थर्सडे को 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है। थोड़ी बहुत क्लाउडी सिचुएशन रहेगी, लेकिन बारिश की सिचुएशन मुझे 20% ही यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब धूप निकलेगी, बीच में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बट बाकी सब ठीक है। फ्राइडे को खिलखिलाता सा चमकता हुआ सूरज आपको नजर आने वाला है, तो अच्छे से विटामिन डी कंज्यूम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस के साथ खिलखिलाता हुआ सूरज और 20% सिर्फ 20% चांसेस ऑफ बारिश के, जो कि ना के बराबर है। अगेन, आज का भी ठीक है, कल का और परसों का और बेहतर होने वाला है, तो रेडी रहिए इसके लिए। मौसम ने अपना फैसला सुना दिया है एटलीस्ट अगले दो दिन के लिए। यहां पर अब हम जरा आपकी नींद थोड़ी सी चुरा लेते हैं, क्योंकि नींद जो है वो अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा नींद लेना जो है वो गड़बड़ होता है, और थोड़ी सी नींद अगर हम आपकी चुरा लेंगे तो इतनी भी गड़बड़ नहीं हो जाएगी, राइट?

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
6: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
5: अरे वाह, इनका पता बताना.
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिव्या के साथ. दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई. मौसम का हालचाल भी जान लिया गया है. अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वही गाने जो आप हमारे इस प्रोग्राम में फरमाइश करके हमारे इस प्रोग्राम को बेहद खास बना देते हो, उसी की बात मैं कर रही हूँ. सो ध्यान से सुनिएगा. जी हाँ, आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो, आप किसी को स्पेशल फील करवा सकते हो एक खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करके उनकी तारीफ में, या यू नो व्हाट आई मीन. वो सारी चीजें कर सकते हो आप, और आपको करने के लिए वो अपना फोन उठाना है और एक नंबर डायल करना है. नंबर है +91828871701. आई रिपीट, +91828871701. तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश. और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सबके लिए.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, तो मैंने अभी आपको कहा था कि कैसे आप अपने गानों को हम तक पहुंचा सकते हो, अपने फेवरेट गानों को, और हम आपके लिए उन्हें प्ले करेंगे। वेल, यहाँ पर हमारे लिए फरमाइशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और पहली फरमाइश जो मैं प्ले करने वाली जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ, तो मैंने अभी आपको कहा था कि कैसे आप अपने गानों को हम तक पहुंचा सकते हो, अपने फेवरेट गानों को, और हम आपके लिए उन्हें प्ले करेंगे। वेल, यहाँ पर हमारे लिए फरमाइशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और पहली फरमाइश जो मैं प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही जबरदस्त

आराधना पिक्चर का कोई भी गाना प्ले कर दीजिए, राजेश खन्ना का कोई भी गाना प्ले कर दीजिए आराधना पिक्चर का. सो आई वॉज लाइक या वाई नॉट, और मैं सोच रही थी कौन सा गाना प्ले किया जाए, एंड देन आई वॉज लाइक या मतलब मेरे सपनों की रानी से ज्यादा बेहतर और क्या होगा. ऑल्दो इसके और भी गाने बहुत अच्छे हैं, बट मेरे सपनों की रानी हिट्स डिफरेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जरूर हमें बताइएगा. एंड यानिक जी थैंक यू सो मच हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यार देते हो हमारे प्रोग्राम को, जब आप सुनते हो और फरमाइशें जब करते हो, तब तो बेहद बेहद अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. ये रहा आपका गाना बिना देर किए हुए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा गाना.

लगता है ना, इट्स गुड टाइम टू बी अ डॉग इन दिस वर्ल्ड. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ऐसा क्यों कह रही हो, मतलब इंसान जो है वो सबसे सुपीरियर है, इंसान जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, पर डॉग बनने में क्या मजा है. वेल आजकल डॉग्स की भी काफी ऐश हो रही है. सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है कि चाइना, अमेरिका और कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर डोगों के, यानी कि डोगों के, डॉग्स के जो है वो स्कूल्स हैं जहां पर वो सुबह सुबह बड़े ही मजे से जाते हैं, बस में बैठ के पूरा दिन फन करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ होता है, बिल्कुल वैसा डॉग्स के साथ होता है. अच्छा, दूसरी चीज, साइंटिस्ट जो है वो डॉग्स को लंबी उम्र देने के लिए काम कर रहे हैं पूरी तरह से. वेल, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई वुड से, क्योंकि इसकी जरूरत हमें है. और किसी ने कहा है ना कि हमें अपने आईफोन में एक और कैमरा नहीं चाहिए, हमें अपने आईफोन में एक और नई हरकत नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा डॉग जो है वो लंबा जी सके, हेल्दी लाइफ जी सके. एंड साइंटिस्ट, गेट योर प्रायोरिटीज राइट, आपको इस पे काम करना चाहिए. तो आई थिंक साइंटिस्ट ने हमारी सुन ली है और वो सच में इस पे काम कर रहे हैं. लेकिन एक और चीज हुई जिसके बारे में मैंने कल ही देखा है और मुझे ऐसा लगा कि वाओ, नाउ वी आर टॉकिंग. जी हाँ, सो बेसिकली साइंटिस्ट उनकी लंबी उम्र के लिए काम कर रहे हैं. ऑफकोर्स उनके लिए स्कूल्स खुल गए हैं, उनके मजे के लिए बसेस आती हैं, उनको फन करवाती हैं, और अब उनकी अपनी रामेन भी आ गई है मार्केट में. आप लोग बोलोगे हैं रामेन? वेल, इफ यू डोंट नो व्हाट रामेन इज, यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स. रामेन आर द काइंड ऑफ नूडल्स एंड इंस्टेंट नूडल्स बेसिकली, जैसे कि आपने मैगी के बारे में सुना होगा, दूसरे इंस्टेंट नूडल्स के बारे में सुना होगा, जो सीजनिंग के साथ आते हैं और आप उन्हें बॉईल करते हो, उसमें सीजनिंग डालते हो और उससे बड़े ही आराम से खाते हो. वेल, इट्स अ वेरी वेरी बैड फूड फॉर योर हेल्थ और गट, बट द थिंग इज कि वी लव इट एंड वी ईट इट ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एवरी वीक. सो द थिंग इज कि यहाँ पर इंसानों के लिए तो रामेन थी ही, मतलब ये कोरिया का जो वर्ड है जो रामेन आया है, मतलब इंस्टेंट नूडल को रामेन कहते हैं वो वहां पर, और यहाँ पर ये इतना नाम फेमस हो गया कि अब डॉग्स के लिए भी रामेन जो है यहाँ पर मार्केट में आ गई है. जी हाँ, सो बेसिकली आप उनको वैसे ही करते हो, आप उनको भी बॉइल करते हो, आप उसमें सीजनिंग डालते हो और आपका डॉग उसे बहुत ही मजे से खाता है. आप लोग बोलोगे वाओ निव्या, ऑफकोर्स जिन लोगों के पास डॉग्स हैं वो तो डेफिनेटली ये बोलेंगे क्या, रियली, आर यू किडिंग मी, मतलब कितना मजा आएगा, हमारे डॉग्स भी हमारे जैसे रामेन इंजॉय कर पाएंगे. वेल यार, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. सो अगर आपने इसके बारे में नहीं नोटिस किया है, जरूर कीजिए, देखिए क्या माजरा है. और क्या आप भी अपने डॉग को कुछ ऐसा देना चाहते हो, या आप बोलोगे कि नहीं, हम खुद भी हेल्दी खाएंगे, अपने डॉग को भी हेल्दी देंगे, एंड देन आपका डॉग आपको साइड आई देगा कि है नहीं, पर मतलब हेल्दी ठीक है, पर थोड़ा बहुत ऑफ द ट्रैक जाके थोड़ा सा अच्छा खाना खाने में बुरा ही नहीं है मालकिन. जी हाँ, यहाँ पर आपका डॉग आपको डेफिनेटली साइड आई दे सकता है अगर उसने ये सुन लिया है कि मार्केट में आ गई ये नई रामेन और आपने उन्हें अभी तक नहीं खिलाई है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि जबरदस्त है, अगेन.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब आपको बताते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के बारे में जो कि इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और ये है इंडिया की वीडियो। जी हाँ, इंडिया में कर्नाटका की ये वीडियो है जहां पर एक बैंक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बैंक में बंद कर देता है, मतलब खुद बाहर चला जाता है और बाकियों को बैंक में बंद कर देता है ताकि वो ओवर टाइम कर सके। आप लोग बोलोगे हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निव्या, द फनी थिंग इज इट्स मतलब वो प्राइवेट बैंक नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक। कर्नाटका की मैं बात कर रही हूँ, कर्नाटका का एक बैंक है और कर्नाटका ग्रामीण बैंक, वहां का मैनेजर जो है वो ये कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि हमें लगता था कि ये बाकी प्राइवेट सेक्टर के बॉसेस ही करते हैं ऐसे, वहां के मैनेजर्स ही करते हैं ऐसा परेशान और लिटरली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ये मैनेजर नहीं है तो डैमेजर है। जी हाँ, बात तो सही है, वो डैमेज कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि क्या चल रहा है दुनिया में। अब ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, वो बंदा बाहर जा रहा है, गेट जो है वो बंद कर रहा है, और वहां पर जब उसको बोल रहे हैं कि सर 5 बज गए हैं, 6 बजने को आ गए, मेरा ऑफिस जो है वो 5 बजे खत्म हो जाता है, आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो वो सामने से जाते हुए कह रहा है, खुद जा रहा है, वो कह रहा है कि आपको काम करने की जरूरत है, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम लोग ओवर टाइम कर सको, और इसलिए दरवाजा भी बंद कर रहा हूँ। जी आप लोग बोलोगे कि इस केस में तो सिर्फ एक ही इंसान जो है वो सिक्योर है, एंड दैट इज अ सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि वो बाहर है। जी हाँ, अगर वो भी अंदर होता तो वो भी बेचारा अंदर ही रह जाता, बिकॉज अपेरेंटली हमारे मैनेजर्स इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो एम्प्लॉयज को कैद करने की सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, बोल के जो है अब नहीं चल रहा है काम, कि चलिए काम कर देना, थोड़ा ऐसा कर देना, वैसा कर देना, थोड़ा सा ज्यादा काम कर देना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा देना। तो अब उन्होंने सोच लिया कि ऐसा करते हैं, इनको बंद ही करके चले जाते हैं, और क्या करेंगे, काम तो कर ही देंगे फिर। जी हाँ, आप लोग बोलोगे क्या चल रहा है। वेल, इंडिया में तो डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडिया के कैपिटल में भी बहुत कुछ चल रहा है, विच वी आर गोना टॉक अबाउट लेकिन थोड़ी देर में। और इसी के साथ, अगर आपने ये वीडियो देखी है या नहीं देखी जरूर मुझे बताइएगा। लाइक लिटरली मैनेजर्स जो है वो ऑफिस में बैंक में बंद करके जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो करें क्या ओवर टाइम। क्या होगा, क्या होगा इस जगत का। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने एवेंजर्स मार्वल एवेंजर्स डूम डे का ट्रेलर देख लिया या नहीं? वेल वेल वेल, आपको मिस नहीं करना है क्योंकि एवेंजर्स डूम्स डे का ट्रेलर आ गया है और इनफैक्ट इसकी टिकट्स की सेल भी शुरू हो गई है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, कल ही तुम बता रही थी कि मूवी जो है वो अभी बहुत लेट रिलीज हो रही है। वेल लेट नहीं, 18th of December को रिलीज हो रही है, बट मार्वल को पता है कि ये लोग हमारा सर खा जाएंगे, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो, तो इसलिए हम पहले ही टिकट बेचना शुरू कर रहे हैं। अब अगर अभी भी तुम टिकट नहीं ले पाए तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी। जी हाँ, सो मार्वल ने यहां पर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है। बट द थिंग इज कि ये जो ट्रेलर है ये बहुत कुछ आपको दिखा रहा है ना। आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वॉच इट योरसेल्फ एंड लेट मी नो योर थॉट्स। जी हाँ, सो अगेन मार्वल के डूम्स डे में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डॉक्टर डूम का, वो है आपके फेवरेट आयरन मैन, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि आयरन मैन के कैरेक्टर में आपको नजर आए थे, लेकिन इस बार आपको डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। और आपको याद है जब उन्होंने अनाउंस किया था कि कैसे वो अनवेल किया था कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आने वाले हैं, उसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया था, लेकिन लिटरली इंटरनेट ब्रेक कर दिया था। एवरीवन, प्रीटी मच एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट देम। सो ऑफ कोर्स अब मूवी तो आ ही रही है और अभी ऑलमोस्ट 5 महीने है, बट द थिंग इज पीपल आर ऑलरेडी गोइंग क्रेजी। सो या वॉच द ट्रेलर एंड लेट मी नो योर थॉट्स। और क्या आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो या ठीक ठीक एक्साइटेड हो, जरूर बताइएगा फॉर द डूम्स डे ट्रेलर एंड द पिक्चर। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

Sexy.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
10: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
11: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
12: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
11: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
12: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
11: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
12: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
13: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
14: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
15: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है। गपशप चलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, आपको हंसाते भी रहेंगे और बहुत सारे मजे भी करवाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बर्थडे विश हम करवाने वाले हैं या करने वाले हैं, वो है हमारे बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, और कहना सही होगा कि वो हमारी एज के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अरमान मलिक। जी हाँ, अरमान मलिक, जो कि लिटरली जब भी गाना गाते हैं बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। जी हाँ, आपने उनका गाना सुना है, बोल दो ना जरा ना ना ना। जी हाँ, आई नो आप चाहते हैं कि निवेश शर्मा ना गाए, सो निवेश शर्मा नहीं गाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट द थिंग इज कि आज अरमान मलिक का जन्मदिन है, और सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिसवानी की तरफ से। हम यही कहेंगे अरमान, आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे, बहुत ही जबरदस्त रहे, सक्सेस आपको मिले, हेल्थ और वेल्थ भी बनी रहे बहुत ही अच्छे से, और इस साल आप और भी अच्छे से सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ते रहिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने गाते रहिए, बिकॉज वी लव दीज सॉन्ग्स। मतलब आपकी आवाज और रोमांटिक गाना, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। सो या, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और ये रहा अरमान मलिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, आई मीन इतनी बड़ी बात है, सो उन्हीं का गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो ये खूबसूरत सी वाइब जो हमने आपके लिए यहाँ बनाई है इन खूबसूरत से गानों के साथ है। जी हाँ, अब ये गाना जो आपने सुना अभी, ये भी कितना प्यारा है, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये गाना है इमरान हाशमी और विद्या बालन की मूवी का, और बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है। जी हाँ, इसी के साथ अब बिना देर किए हुए चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, मतलब कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड पे क्या हो रहा है, और पॉलिटिकल वर्ल्ड के साथ साथ वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है। वी आर गोना टॉक अबाउट इट ऑल। सो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, यानी कि इंडिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले जंतर मंतर पर चल रहा है प्रदर्शन, और यहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में अब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जी हाँ, और जो लाठीचार्ज हुआ है, अब बारिश हो रही है, इसके बाद क्या क्या हुआ, आइए जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। सो दिल्ली में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट एग्जाम लीक के खिलाफ। वो चाह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का उनको इस्तीफा मिले, बट गवर्नमेंट अभी तक वो नहीं दे रही है, और इसी की वजह से जंतर मंतर के साथ उन्होंने संसद चलो का जो है वो एक प्रोटेस्ट किया था, संसद मार्च का एक प्रोटेस्ट किया था, और वहीं पर उन पर लाठीचार्ज हुआ। जी हाँ, तो बुधवार सुबह बारिश भी हुई है और इसमें भी प्रदर्शनकारी यहां पर डटे रहे और तिरपाल का इस्तेमाल करते रहे। जैसे पहले मंगलवार देर शाम को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा समेत कई नेता यहां पर पहुंचे थे। जी हां, वहीं सोमवार को हुए विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले दागे थे। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कुल कितने स्टूडेंट्स घायल हुए, इसकी स्वतंत्र रूप से अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया था कि इस दौरान 70 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया था कि सोमवार को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के कुल 118 जवान भी घायल हुए थे। बारिश में तिरपाल थामे खड़ा एक युवा जो है उसकी फोटो जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, और बारिश की वजह से जंतर मंतर पर तिरपाल बांधकर अब वो स्टूडेंट्स और प्रदर्शनकारी अगर वो स्टूडेंट्स हैं या कितने हैं वो हमको नहीं पता, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। जी हाँ, इसी पर यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह की भी टिप्पणी आई है। जी हाँ, सो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर सोमवार को संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद सिनेमा जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने इसकी निंदा की है। अब दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी कुछ कहा है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि ये सब बच्चे हिम्मत ना हारें, बहुत से लोगों की हमदर्दी इनके साथ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि एक्टिंग के दो कोर्स पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा उन बच्चों से सीखा है जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, मैं उन्हें हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस वक्त मेरा दिल भरा हुआ है और मैं ये देखकर गुस्से से खौल गया हूं कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह जुल्म से भरा बर्ताव किया जा रहा है। छात्रों के साथ यह व्यवहार उन गुंडों के हाथों हो रहा है जो मुझे अमेरिका के आईएस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, जिनके हाथों में डंडे और मुंह पर नकाब होता था। कभी

अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। ये कहा गया है नसीरुद्दीन शाह की तरफ से।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
6: Digicel, better together.
7: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
8: Priya, next month Mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
8: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
9: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और
11: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ, एंड हम बात कर रहे हैं खबरों की। जी हाँ, तो अब जरा बात कर लेते हैं अगेन ईरान की, क्योंकि ईरान से भी कुछ खबर है। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति पज़िश्कियान ने अपने ही देश के सरकारी न्यूज चैनल की आलोचना की है। जी हाँ, क्यों? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़िश्कियान ने वहां के सरकारी न्यूज चैनल IRIB की आलोचना की है। मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि सरकारी चैनल ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान का एक तय हिस्सा चलाया, जबकि पूरा बयान नहीं दिखाया। मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए खामनेई ने मंजूरी दी थी, लेकिन टीवी चैनल ने खामनेई के सिर्फ उन बयानों पर ध्यान दिया जिनमें बातचीत से इनकार किया गया था। उन्होंने बातचीत को लेकर हो रही गलत और बिना जानकारी वाली टिप्पणियों की आलोचना की। पज़िश्कियान ने एकता और आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील भी की है। इस बीच अमेरिकी सिटकॉम ने बुधवार सुबह ईरान के ठिकानों पर एक घंटे तक किए गए हमलों के 11वें दौर की जानकारी दी। बाद में सिटकॉम ने बताया कि ये हमला खत्म हो गया है। इसके बाद ईरान की समाचार एजेंसियों ने कहा कि तेहरान समेत कई नए इलाकों में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई थी।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम जरा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, एक साल तक जेनेरिक दवा पर 0% टैरिफ। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के आयात को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इन दवाओं पर 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन एक साल बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल की अवधि तक टैरिफ 0% रहेगा। इसके बाद 1 साल की अवधि के लिए टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद ये 200% हो जाएगा। उन्होंने लिखा, ये कदम जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को वापस अमेरिका में लाने के लिए उठाया गया है, जो कंपनियां दिए गए समय के अंदर अमेरिका में दवा बनाने के लिए फैक्ट्री और जरूरी सामान नहीं लगाएंगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, ये कहा गया है मिस्टर ट्रंप के द्वारा। अब आपको तो पता ही है कि इस इंसान को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट आप ये सोचिए कि 1 साल के लिए यहाँ पर टैरिफ जो है वो फार्मास्यूटिकल्स से उन्होंने कुछ कंपनियों से हटा लिया है। आपको एक और चीज बताते हैं कि इनके पीट हेग्सेथ, जी हाँ, पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है वॉर आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको पैसे की जरूरत है। जी हाँ, ये कांग्रेस में उन्होंने कहा है। आप लोग बोलोगे कि है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कहाँ लड़ने चले हो। जी हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी यही सोच रही थी। बताते हैं कि इसकी पीठ हेग्सेथ ने बताया कि उनका अभी तक का खर्चा बहुत सारा हो गया, मतलब बहुत सारे बिलियन डॉलर्स का खर्चा जो है वो अभी तक की ईरान वॉर में जो है वो आ गया है। और ऐसे में उन्होंने इसके बारे में फिगर्स में भी बताया और उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें और पैसे की जरूरत है, क्योंकि ईरान के साथ लड़ना है तो और पैसा लगने वाला है। सो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ईरान के साथ लड़ने के लिए पैसा चाहिए। दैट्स व्हाट ही सेड। ऑफ कोर्स हम थोड़ा मजे में बता रहे हैं, बट द थिंग इज कि पैसे मांगने का, कटोरा लेके पैसा मांगने का जो है वो यहां पे इरादा था। एक और चीज आपको बताते हैं, एक और बड़ी ही खतरनाक चीज। सो अपेरेंटली स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और जिसके लिए उन्हें 51 मिलियन डॉलर के करीब जो है वो पैसे मिले थे। जी हाँ, अब ये जो प्राइज मनी है इस पे भी अमेरिका जो है वो नजर डाले हुए। अमेरिका कह रहा है कि स्पेन, तुमने बहुत अच्छा सा खेल के यहाँ पर प्राइज मनी को जीता है, अब ऐसा करो तुम इस प्राइज मनी से हमको पैसा दो। जी, आप लोग बोलोगे कि ये कैसे लोग हैं, ये हर जगह कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। वेल ऑफ कोर्स, एंड गेस व्हाट, ऐसे तो कहने के लिए ये सबसे अमीर देश है, ऐसे तो कहने के लिए इनसे ज्यादा बड़ी टेक कंपनीज कहीं नहीं है, ऐसे तो कहने के लिए इनसे ज्यादा बिलियनियर्स और मिलियनियर्स किसी और कंट्रीज के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कटोरा ही लेना पड़ता है एंड में, तो फिर क्या फायदा है इतनी सारी चीजों का। जी हाँ, सो स्पेन ने इतनी मेहनत करके वर्ल्ड कप जीता और 51 मिलियन डॉलर की रकम को अपनी जेब में डाला, लेकिन अमेरिका यहाँ पे कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं हमें भी चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। वेल, लॉजिक जो अमेरिका का है हम आपको समझाते हैं। सो अपेरेंटली अमेरिका में कोई भी कुछ खेलता है और उसकी वजह से अगर उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे अर्न करता है, तो उस पर टैक्स लगाता है अमेरिका। सो अपेरेंटली अमेरिका ने टैक्स लगाया है उस प्राइज मनी पर जो कि स्पेन ने जीती है अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप खेलकर। आप लोग बोलोगे किसने कहा था अमेरिका में फीफा होस्ट करने के लिए, किसने कहा था। वेल, ये भी मैं ही सोच रही हूँ, मतलब मैं भी यही सोच रही हूँ। अब आप लोग बोल रहे हो कि ये इंसान कह रहा है फिर से आना और फिर से हमारे पास अपनी प्राइज मनी का कुछ हिस्सा जो है वो छोड़कर जाना। अब आप लोग बोलोगे कि एग्जैक्टली कितना ये मांग रहे हैं। वेल, जितनी परसेंटेज ये लगाते हैं उस हिसाब से ये 51 मिलियन डॉलर से उनसे लेना चाहते हैं, मतलब 51 मिलियन डॉलर स्पेन के पास है लेकिन उसमें से 13.1 मिलियन डॉलर ये टैक्स जो है वो मांग रहे हैं स्पेन से। स्पेन वाले बोलेंगे कि अब फीफा कहीं भी जाना लेकिन अमेरिका मत जाना, तुम मार्स पे जाना, तुम जुपिटर जाना, तुम वीनस जाना या सैटर्न जाना, पर अमेरिका मत जाना, क्योंकि एटलीस्ट मार्स, वीनस और जुपिटर पे हमसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा अगर हम जीतेंगे। मतलब आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने कितना पैसा कमाया है इससे और वो टैक्स भी मांग रहा है स्पेन की प्राइज मनी से। ओहो, क्या कहूं मैं, कटोरे की वाली आदत है ना, कटोरा लेके पहुंचने वाली आदत है, वो नहीं जाती। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। तो दोस्तों, मुझे तो पता चल गया है कि आजकल के मिलेनियल्स शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। वेल, वही लोग जो 1989 से लेके, यानी कि 1990 से लेके, या फिर कहीं 1991 से लेके 1998 या 1999 तक की जितनी भी लोग हैं, ये शादी कर ही नहीं रहे। और ये शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, मुझे समझ आ गया, क्योंकि इनके बदले की शादी और बाकी सारे लोग कर रहे हैं। बाकी सारे क्रीचर्स और प्रजातियां कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी तो मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत फार्म में एक गाय की शादी हो रही थी एक बुल के साथ। जी हाँ, और उसके लिए बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे। वहां पे उनके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो रखी गई थी, उनकी शादी कराई गई, उनको सुंदर सुंदर सजाया गया था, उनके लिए केक भी बनवाया गया था। जितने भी गेस्ट थे उनको खाने के लिए केक मिलता है, लंच करने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अब आप लोग बोलोगे कि हाँ, बात तो सही है। अब यहाँ पे गाय और भैंसे शादी कर रही हैं और ये सारी चीजें शादी कर रही हैं, तभी मिलेनियल शादी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके हिस्से की शादियां तो कोई और कर रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रोबोट्स भी शादियां कर रहे हैं। जी हाँ, अभी कुछ वक्त पहले तक आपने ये सुना था कि इंसान जो है वो AI से शादी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोबोट्स को भी ये समझ आ गया है कि भाई देखो, जीवन साथी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शादी का लड्डू जो है वो खा लेना चाहिए, शादी की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ले लेनी चाहिए, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। अब खा के पछताइए, बिना खा के क्यों पछताना है? जी हाँ, सो यहाँ पर रशिया की ये खबर है। रशिया से एक किस्सा जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट एवर सिम्बॉलिक वेडिंग सेरेमनी जो है फॉर ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो देखी गई है, करवाई गई है इन मॉस्को। सो गाय भैंसे शादी कर रही है, मैंने कहा घोड़े शादियां कर रहे हैं, यहां रोबोट्स भी शादियां कर रहे हैं, बस हमारे भाई बहन शादियां नहीं कर रहे। जी हाँ, वही जो 1991 से लेकर 1999 के बीच में पैदा हुए उनको शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सबको शादी में इंटरेस्ट है। जी हाँ, सो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों AI पावर्ड रोबोट्स जो है, रोबोट एंड मैटिल्डा जो है, वो डिक्लेयर किए गए हैं रोबोट स्पाउसेस। जी हाँ, ड्यूरिंग एन इवेंट एट पुश्किन लाइब्रेरी। जी हाँ, सो पुश्किन लाइब्रेरी में ये हुआ है। ये ऑफिस वर्कर जो है और ब्लॉगर है, और यहाँ पर ये बैलरीना का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो रोबोट्स जो है उन्होंने एक्सचेंज किए अपने वॉज, और ये सिंबॉलिक वेडिंग जो है उन्होंने ब्रेसलेट्स भी एक दूसरे को दिए, मतलब वो अंगूठियां भी पहनाई गई है एक दूसरे को। जी हाँ, और ये होस्ट जो थी इसकी थी मारिया पेंटियुकिना। अब आई डोंट नो कि मैं इनका नाम या सरनेम ठीक ले रही हूँ या नहीं, क्योंकि आप नहीं ले सकते यूक्रेनियन और रशियन लोगों के नाम या सरनेम से ही, मतलब इतने खतरनाक सरनेम होते हैं कि आप उनमें खुद ही भूलभुलैया में फंस जाओगे उनके सरनेम की भूल भुलैया में। सो द थिंग इज कि यहां पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो शादी करते हुए नजर आए, और वो रोबोट जो है फीमेल रोबोट, अपेरेंटली जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको बहुत ही सुंदर जो है वो व्हाइट ड्रेस पहनाई गई थी, उसको वेल जो है वो पहनाया गया था, और वहीं वो जो टक्स में जो है वो दूसरा जो है वो नजर आया रोबोट, जो कि बेसिकली मेल रोबोट है। या आप लोग बोलोगे कि वाह निविया, यहाँ पे रोबोट्स की भी शादियां हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि आपके आजू बाजू कौन मिलेनियल है जो कि शादी नहीं कर रहा है, जिसका शादी का इरादा नहीं है, उनको दिखाओ ये कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में सब शादी कर जाएंगे और फिर तुम देख लेना। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब, और अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। और मतलब वही है जो आप सोच रहे हो कि गाने होंगे अब पुराने, तराने भी होंगे फराने पुराने, फसाने भी होंगे पुराने, और तो और किस्से भी होंगे पुराने। तो सब कुछ पुराना होने वाला है, नया कुछ भी नहीं होगा, नए हम और आप ही हैं बस, बट बाकी सारी चीजें सब पुराना होने वाला है। खूबसूरत प्योर चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, किस्सों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अगर आपकी कोई फरमाइश है पुराने गानों से रिलेटेड तो भेज दीजिए हमें, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। एंड इसी के साथ जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ सबसे पहला हमारे इस सेगमेंट में, वो है कभी कभी मेरे दिल में, और ये है सोलो बाय मुकेश। चलिए ये गाना मैं अब आपके लिए प्ले कर रही हूँ, और आप सोच सकते हो कि इस गाने से एसोसिएटेड एक इंसान का आज जन्मदिन है। वो इंसान हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस गाने से एसोसिएटेड जितने भी उनमें से एक इंसान का आज जन्मदिन है, जो कि हम बर्थडे विश करने वाले हैं। आप गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? चलिए आप गेस कीजिए, यहां पर हम आपको पहले गाना सुनाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे मुकेश की। जी हाँ, मुकेश के बारे में हम क्या कहें, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो लिटरली दी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से एक रहे हैं उस एरा की। जी हाँ, वो एरा कही जाती थी लता जी की, वो एरा कही जाती थी आशा जी की, वो एरा कही जाती थी रफी साहब की, किशोर दा की और मुकेश की। अब मुकेश जी का आज जन्मदिन है, ऑफ कोर्स हम उन्हें याद करेंगे, उनके गाने भी प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब बात होती थी बहुत ही गुड लुकिंग सिंगर की ना, तो मुकेश जी का नाम जो है वो हमेशा ऊपर आता था। अगर आपने मुकेश जी को देखा नहीं है ना, तो आप मुकेश को देखना जरूर। आप उनकी तस्वीर देखकर कहोगे कि यार मतलब क्या बात है, ये तो लिटरली हीरो मटेरियल थे। जी हाँ, ऐसा ही कहा गया उन्हें भी। उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश भी की एज अ हीरो, बट उनकी पिक्चर चल नहीं पाई और फिर उन्होंने देख लिया कि नहीं, एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, ये गाना गाना ही मेरे लिए। लेकिन जब वो गाना गाने की कोशिश कर भी रहे थे तो उस वक्त भी उनको काफी सारे क्रिटिसिज्म झेलने पड़े थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता था कि उनकी आवाज का जो वॉइस टेक्सचर था वो बहुत ही डिफरेंट था, और ऐसे में वो वॉइस टेक्सचर जो है वो मीठा नहीं फील होता था, मतलब बहुत ज्यादा मधुर फील नहीं होता था लोगों को। और इस वजह से मुकेश को किसी ने ये तक कह दिया था कि आपको गाना गाना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी आवाज इसके लिए बनी ही नहीं। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, वेल वी आर गोना टेल यू अबाउट दैट। लेकिन पहले हम प्ले करेंगे यहाँ पर एक फरमाइशी गीत, और ये फरमाइशी गीत जो है वो फरमाइश किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, सो जस्सी जी ने जिस गाने की है फरमाइश, उसका नाम है दिल कहे रुक जा, क्या हुआ फिर उसके बाद, वेल वी आर गोना टेल यू अबाउट दैट। लेकिन पहले हम प्ले करेंगे यहाँ पर एक फरमाइशी गीत, और ये फरमाइशी गीत जो है वो फरमाइश किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, सो जस्सी जी ने जिस गाने की है फरमाइश, उसका नाम है दिल कहे रुक जा रुक जा। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना धर्मी

आवाज बहुत अच्छी है आपकी, जब आप गाना गुनगुनाते तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए हमारे प्रोग्राम को, और खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
3: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब हम आपको बताने वाले हैं मुकेश के बारे में, क्योंकि मुकेश जी का आज जन्मदिन है। मुकेश वही जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिट गाने हमें दिए हैं। जी हाँ, उनकी वॉइस टेक्सचर इतना यूनिक था कि लोग जो हैं वो बहुत ही दीवाने उनके हो गए थे। ऑफकोर्स इट वॉजंट फॉर एवरीवन, बट जो उनका डेडिकेटेड फैंडम था वो उनके गानों का, उनकी वॉइस का दीवाना था। जैसे मैंने आपको कहा कि मुकेश जो है वो, उनको कहा गया कि आप एक्टर बन सकते हो और उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक्टिंग कि जो है वो करियर इतना अच्छे से चल नहीं पाया क्योंकि उनकी फिल्म नहीं चली। और उसके बाद उन्हें लग गया कि मैं एक सिंगर ही अच्छा हूँ, मुझे गाने गाना पसंद है और मैं सिंगर ही बन के रहूँगा। लेकिन उनके लिए सिंगिंग करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात से भरा हुआ था, क्योंकि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जब उनकी आवाज़ सुनता था तो उनको लगता था कि ये बात कैसे बनेगी, आवाज़ मधुर ही नहीं लग रही, वॉइस टेक्सचर जो है वो बहुत अजीब है और ये कैसे चलेगा, कोई भी एक्टर की आवाज़ इस पे जमेगी ही नहीं, मतलब आपकी आवाज किसी भी एक्टर पर जमेगी ही नहीं। बट गेस व्हाट, जी हाँ, यही म्यूजिक डायरेक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए और इनके क्रिटिसिज्म को पीछे छोड़ते हुए राज कपूर की आवाज बने मुकेश। अगर आपने राज कपूर के गाने सुने हो तो आपको पता होगा कि राज कपूर की वॉइस जो है, उसका वॉइस टेक्सचर जो है उनके गानों में बहुत ही ज्यादा अलग नजर आता था। तो ये मुकेश की ही आवाज थी। कहां उनको कहा गया कि उनकी वॉइस टेक्सचर इतना यूनिक है, अजीब है, जो कि किसी भी हीरो के नहीं चलेगा, हीरो पर नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि द ग्रेटेस्ट शोमैन की आवाज ही बनूंगा मैं और किसी की नहीं। जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक और चीज की जो बहुत ही खास है, किस्सा, क्योंकि रफी साहब के साथ उनकी बहुत ज्यादा बनती थी और उसी का किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन पहले हम आपको सुनाएंगे एक और खूबसूरत सा गाना मुकेश का ही।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्से के बारे में बताते हैं। जी हाँ, एक गाना है, दिन ढले जाए हाय रात ना। आई नो आई नो आई नो, इससे पहले आप मुझे बोलना शुरू कर दो, निव्या शर्मा, डोंट यू डेयर सिंग दैट मास्टरपीस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं गा रही हूँ, मैं नहीं गा रही हूँ। और ये गाना जो है वो कितना खूबसूरत है आप सबको पता ही है, राइट? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये गाना सुनते ही मुकेश की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए फोन उठाया और नंबर डायल किया रफी साहब का। मुकेश ने कहा कि रफी मियां क्या गाते हो तुम, मतलब तुम्हारी आवाज में भगवान बैठा है, खुदा बैठा है, अल्लाह बैठा हुआ है, मतलब क्या गाते हो, मतलब मैं एक ही चीज भगवान से मांगना चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारे जैसा गा पाता, मतलब ये क्या गाना गाया है। उनको रोता हुआ देखकर रफी साहब भी सामने से रोने लग गए। उनको लगा कि ओ माई गॉड, लाइक दिस इज सच अ हार्ट वार्मिंग रिएक्शन। आपने फैंस को ऐसे रिएक्शन देते हुए देखा होगा, लेकिन एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए ऐसा रिएक्शन देना, ओह कितना कितना हार्ट वार्मिंग है। और मुकेश ने यही कहा कि रफी मियां, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि काश भगवान ने मुझे तुम्हारी जैसी आवाज दी होती, काश मैं तुम्हारे जैसा गा पाता। जी हाँ, और फिर उसके बाद, उस फोन कॉल के बाद, उन्होंने अपने बेटे नितिन मुकेश को बुलाया और कहा, नितिन अगर तुम गाना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एक ही चीज कहूंगा, तुम रफी साहब जैसा गाना, मेरे जैसा नहीं गाना और किसी और जैसा भी मत गाना, रफी साहब जैसा गाना। जी हाँ, रफी साहब जैसा अगर तुम गाओगे ना, तो तुम अपने आप को कामयाब समझ लेना, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी जीत होगी तुम्हारे लिए। आई मीन इमेजिन कीजिए कितनी खूबसूरत और हार्ट वार्मिंग रिएक्शन और जेस्चर है एक आर्टिस्ट का किसी दूसरे आर्टिस्ट के लिए। रफी साहब भी उनकी आवाज को सुनकर रोने लग गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ये गाना इतना खूबसूरती से गाया गया था। जी हाँ, अब ऑफकोर्स ये गाना मैं आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक गाना है जो कि फरमाइशी गीत है, जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बट या जरूर याद कीजिए, जरूर सुनिएगा इस गाने को, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है वो गाना। इसी के साथ ये लास्ट सॉन्ग जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये फरमाइश किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है काली घटा छाई प्रेम रुति आई। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे हैं वाह गाना तो बहुत ही खूबसूरत है। भाई गाना इसलिए भेजा गया है क्योंकि सच में बाहर मौसम का हाल आपने देखा है, बादल छाए हुए हैं आसमान में, काली घटा छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है। सो इसीलिए हमारे लिसनर ने इस गाने को भेजा है। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। एंड डेफिनेटली मौसम के साथ तो ये गाना जा रहा है और हम इसे प्ले करने वाले हैं। ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे सुनते रहिए। एंड दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त भी हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। तब तक के लिए आप मजे कीजिए, फन कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, बट स्पेशली विशाल जी आपके लिए।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनेहा क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। बालकनी की धूल में माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन का खुलासा। जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ब्रिस्बेन के घरों की बालकनी की धूल में गाड़ियों के टायरों से निकलने वाले जहरीले केमिकल और माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं साउथ ब्रिस्बेन के घर में भीषण आग का हादसा। साउथ ब्रिस्बेन के किंगस्टन इलाके में मंगलवार दोपहर एक घर में आग लगने की दुखद घटना सामने आई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। इसके साथ घर खरीदने वालों के लिए लोन कैपेसिटी की नई गाइड। जी हां, ब्रिस्बेन के प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती कीमतों को देखते हुए लोकल मार्गेज एक्सपर्ट ने होम बायर्स के लिए नया बोरोइंग कैपेसिटी गाइड जारी किया है, ताकि लोग घर खरीदने से पहले अपनी बजट क्षमता का सही आंकलन कर सके। वहीं पिकलबॉल कोर्ट वाला नया हाई राइज टावर प्रोजेक्ट। जी हां, इनर ब्रिस्बेन में एक नए रेजिडेंशियल टावर का प्रपोजल चर्चा में है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसकी छत पर पिकलबॉल कोर्ट बनाए जाएंगे। इसी के साथ ब्रिस्बेन ब्रोंकस की ट्रेनिंग कैंप की तैयारी। जी हां, एनआरएल सीजन में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए ब्रिस्बेन ब्रोंकस की टीम फार नॉर्थ क्वींसलैंड के लिए रवाना हो चुकी है, जहां वे एक इवेंट ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। वहीं इमरजेंसी सर्विस 000 का अपग्रेड टला। क्वींसलैंड सरकार ने बताया कि आपातकालीन 000 कॉल सर्विस के सिस्टम अपग्रेड को पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए इसे 2027 तक के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले संसद में नीट लीक पर हंगामा। जी हां, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के तीसरे दिन आज नीट यूजी पेपर लीक मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने पर बिल। आज लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने वाले हैं। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी करना है। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट को विपक्ष का सपोर्ट। दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं एनएचएआई का राजमार्ग यात्रा ऐप अपडेट। जी हां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है। अगर आप किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो अब आप राजमार्ग यात्रा ऐप से घर बैठे ही लोकल ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ गूगल और वीटीयू की टेक पार्टनरशिप। कर्नाटक की विश्वेश्वरिया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वीटीयू ने गूगल के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत इंजीनियरिंग छात्रों को एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी की स्पेशल इंडस्ट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें बेहतर जॉब्स मिल सके। वहीं आईआईटी जेईई रिश्वत मामले में हाईकोर्ट की सख्ती। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिकी कार्रवाई। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में अपनी कार्रवाई जारी रखी है। पेंटागन के मुताबिक इस मिलिट्री कैंपेन का खर्च 37.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वे अभी अपनी कार्रवाई नहीं रोकेंगे। वहीं ब्राजील पर अमेरिकी टैरिफ लागू। अमेरिका द्वारा ब्राजील के सामानों पर लगाया गया 25% का नया इंपोर्ट टैरिफ आज से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। हालांकि कॉफी और बीफ जैसे कुछ जरूरी खाद्य पदार्थों को फिलहाल इस टैरिफ से छूट दी गई है। वहीं फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन। जी हाँ, बच्चों की मेंटल हेल्थ और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने एक बड़ा कानून पास किया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं अमेरिका और सऊदी अरब की सिविल न्यूक्लियर डील, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग मिलेगा। वहीं ग्लोबल रिपोर्ट 3, अरब से ज्यादा लोग पौष्टिक भोजन से दूर। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल महंगाई और सप्लाई चेन की समस्याओं की वजह से दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग हेल्दी और पौष्टिक खाना पाने में समर्थक हैं। वहीं यूक्रेन में मिलिट्री लीडरशिप का फेरबदल, राजनीतिक दबाव और मोर्चे की बदलती स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शीर्ष सैन्य कमान और रक्षा अधिकारियों के पदों में बड़ा फेरबदल किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का शानदार शतक। जी हाँ, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 138 रनों की तूफानी पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। इसके तुरंत बाद वे इंग्लैंड की मशहूर लीग द 100 में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। वहीं फीफा वर्ल्ड कप व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड, हाल ही में खत्म हुए फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत के बाद यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने जानकारी दी है कि इस टूर्नामेंट के कंटेंट को 1.7 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा, जो अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल यानी कि CWG 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड तैयार। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 यानी कि 2026 के लिए भारत की मजबूत टीम की घोषणा हो गई है। इस दल की अगुवाई स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू करेंगे। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। आगामी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम घोषित कर दी गई है और भारत को पूल डी में रखा गया है। वहीं फेडरिको वाल्वेड का 28वां जन्मदिन। जी हां, रियल मैड्रिड के स्टार मिडफील्डर फेडरिको वॉलबर्डे आज अपना 28वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्लब में अपने 9वें सीजन की शुरुआत करने जा रहे वॉलबर्डे अब तक रियल मैड्रिड के लिए 14 ट्रॉफियां जीत चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026 everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan.
10: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani se.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan, and you're listening to Radio Briswani.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं,

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आएगा।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की करना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसवानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते brasawani@brasawani.com साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहो। तां फटाफट दे नाल चक लो अपना फोन ते करो साडे नाल गल्लबातां। मैं हुणे वापस आउंदी हां, तुहाडे सुनेहां दा इंतजार लगातार मैनूं जारी है। हुणे वापस आउंदी हां, उहनां समय सोहणे जिहे गीत सुणो।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो कुछ फिल्मां ना रिलीज होने तो बाद कई साल भी उन्निया ही सदा बार रहिंदियां ने जिन्निया की रिलीज होने वेले सी उन्नी ही फ्रैशनैस बनी रहती है। तो कुछ फिल्मां अपनी कुछ सीन्स दे करके ते कुछ अपने ब्लॉकबस्टर गाणियां दी वजह दे नाल दिनां दे विच पास जांदियां हुंदियां ने कि हर दिल दे विच हमेशा उह रहिंदियां ही रहिंदियां ने। 45 साल पहला एक अजिही एक फिल्म बॉक्स ऑफिस ते रिलीज़ होई सी। फिल्म दा एक गाणा दोस्ती दा मिसाल सी। अज भी दोस्त इस गाने नूं पार्टी फंक्शन से गुनगुनाते हैं ने। सब तो दिलचस्प गल यह हैगी है कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान ना हीरोइन रोंदी हुई सैट छड़ के चली गई सी। हीरो ने किसी तरह गाना पूरा किया, गाना ब्लॉकबस्टर हो गया, फिल्म सुपरहिट हो गई। तो सोचा कि अज तुहानूं क्यों ना इस फिल्म बारे दसा। उस बारे दस दी, पहला ही गीत सुनो।

रोध बड़े वध गए तेरा बन जाना कम लोकी सड़दे हुण।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। देखो, हजारां दी भीड़ दे विच ना कोलकाता स्टेडियम विच फिल्म दा एक गाना फिल्माया जांदा हैगा। सारियां तैयारियां हो चुकियां सी, इस विचकार हीरोइन रोन लगती है, तां फिर की हुंदा है? इस तों बाद दी तां पूरी गल है जो तुहानूं दसणी है। देखो, सुपरस्टार अमिताभ नूं तो देखिया नहीं गया, तां कोले जाके इसकी वजह पुछी। वजह जान के प्रोड्यूसर नूं बुलाया ते हीरोइन नूं उसे समय मुंबई भेजण दा अरेंजमेंट करन नूं कहा। जी हां, असीं गल कर रहे 1981 विच रिलीज़ होई याराना फिल्म दी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म सी जिसका निर्देशन राकेश कुमार ने किया सी। फिल्म विच अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा अते कादर खान लीड रोल दे विच सी। फिल्म दा प्लॉट महाभारत दे करण ते दुर्योधन दी दोस्ती वर्गा जा ही उस तरीके दे नाल दिखाया गया।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 FM चार छे संदेश अलग दिनाल तुसे बने हुए हो। देखो याराना फिल्म दी स्टोरी हैगी है जिड़ी ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, जद के स्क्रीन प्ले विजय कौल ने लिखा है। डायलॉग कादर खान दे सी, प्रोड्यूसर एम ए नाठिया वाला सी, गीतकार अंजान, जद के संगीतकार राकेश राजेश रोशन सी। फिल्म दे कोल 7 गाने रखे गए सी। इन्हां गाणियां विच छूकर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ते तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना, मतलब बहुत ज्यादा हिट होया सी। तीनों गाने सदाबहार है कि नहीं। इस फिल्म दे लई अमजद खान नू बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। छूकर मेरे मन को गाना रविंद्रनाथ टैगोर की एक कंपोजिशन तो लिया गया सीगा। इस बारे होर भी तुहानू दस्सदे आं, पर पहले गी सुन लो।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो 1 जुलाई 1977 विच ना फिल्म लॉन्च हुई सी। फिल्म दा शुरुआत विच टाइटल यार मेरा सी। इस विच का डायरेक्टर अमिताभ दे नाल मिस्टर नटवर लाल बना रहे सी। दो पांच मूवी भी कंप्लीट हो गई सी। इन फिल्मों के निर्माता अमिताभ तो पहला ही डेट्स ले चुके सी। याराना मूवी विच अमिताभ के ऑपोजिट नीतू सिंह नु कास्ट किया गया सी। दोवां दी चंगी दोस्ती सी। अमिताभ दे कोल बहुत घट समय होने के चलते फिल्म नु पूरा होना भी लंबा समा लग रहा सी। इना लंबा समा लग्या कि नीतू सिंह दी ऋषि कपूर दे नाल एंगेजमेंट तक हो गई सी। इसे तो बाद दी पूरी कहानी हैगी है जिहड़ी मैं तुहानू एक एक करके दसदी आं, पर पहला एगी सुन लो।

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 FM ते जी। आज संदेश अलग दिन से बने हुए हूँ। देखो, नीतू सिंह अमिताभ बच्चन की कहानी दस रहे थे याराना मूवी की। नीतू सिंह ने नवीं फिल्मा साइन करना बंद कर दिता सी। दोवां दी विआह दीआं तैयारियां चल रही सी। फिल्म का एक गाना सारा जमाना हसीनों का दीवाना कोलकाता के स्टेडियम विच शूट होया सी। जद इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही सी तां ऋषि कपूर की याद विच नीतू सिंह रो रही सी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह नाल उन्हां दी गल ऋषि कपूर दे नाल नहीं हो पा रही सी। उधर मुंबई विच ऋषि कपूर परेशान सी। नीतू सिंह नूं रोंदा देख के अमिताभ ने ना वजह पुछी। नीतू ने कहा है कि वह मुंबई वापस जाना चाहती है। अमिताभ ने प्रोड्यूसर नूं बुलाया ते नीतू सिंह दी मुंबई की फ्लाइट टिकट बुक करने लई कहा। अमिताभ ने नीतू दे बिना गाने ते कल्ले ही परफॉर्म किया। यही वजह है कि गाने के पहले हिस्से में नीतू सिंह नजर आती है, बाद विच नहीं। ये गाना बेहद बेहद पॉपुलर होया सी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

0: जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वनसन वन एम ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए। देखो फिल्म दे कई सीन्स विच नीतू सिंह दी डबिंग रेखा ने भी कीती है कि अमिताभ याराना फिल्म दे मुंबई रीजन दे डिस्ट्रीब्यूटर सीगे। उन्होंने उन्हीं दिनी ना सिलसिला दी डबिंग भी हो रही सी पर वह टालते रहे। यश चोपड़ा नूं जद असली वजह पता चली तो उन्हां रास होई। डायरेक्टर राकेश कुमार दे नाल अमिताभ बच्चन की 2 और 2 5 फ्लॉप हो चुकी सी। अजे विच अमिताभ हर हाल विच याराना नूं हिट करना चाहते सीगे। फिल्म के कई सीन्स फिर तो शूट भी किए गए सी। सारा जमाना हसीनों का दीवाना गाने नूं कोलकाता दे स्टेडियम विच फिल्माउण दा आइडिया अमिताभ बच्चन दा सी। नीतू सिंह गाना छड़ के मुंबई लई निकली। जद होटल जा रही सी तां रास्ते विच कार खराब हो गई, भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने अमिताभ नीतू नूं कार तो बाहर निकलण दी रिक्वेस्ट की थी, पर दोवें कार विचों नहीं निकले। इस वजह नाल भीड़ नूं भी अंदाजा हो गया कि कार खराब हो गई है। फिर किसी भीड़ ने कार नूं धक्का लगा के होटल तक पहुंचाया। अमिताभ बच्चन फैंस नूं प्यार ता शुरू तो करते ही रह गए ने, उन्होंने प्यार नूं फैंस भी कदे नहीं भुलांदे।
1: मुंडा साधुआं दा

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसानी वन सन वन एम ते जी आर सी संदेश अलग दिन से बने हुए हो। खैर वेलकम तो मैं थोड़ा करता है गया, पर हुण वेला हो चुका है थोड़े तो टाटा बाय बाय कहण दा, थोड़े तो इजाजत लैण दा। यार उन्हां दी थोड़ी जी गल होर कर दिंदी हां मैं। अमिताभ ने ना सारा जमाना गाने विच एक खास तरह दे इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी 1979 यानी कि 1979 विच अमेरिकन फिल्म द इलैक्ट्रिक हार्समैन विच रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी ना उस तरह थी। उधर ए आइडिया प्रोड्यूसर दे मन विच आया, लाइट नू ऑन ऑफ करन दा बटन अमिताभ दे हाथ विच सीगा। 2.25 दे बजट विच बनी इस फिल्म ने 3.5 करोड़ दा बिजनेस कीता सी। एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई सी। ते यही कहानी सी कि इस फिल्म दे विच जिहड़ा गाने दे विच नीतू सिंह नजर नहीं आई बाद दे विच, है ना। कहानी बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी तुम अपनी कहानियां जरूर दस रहा करो, साथ नाल जुड़ते रहा करो। रेडियो ब्रिसोनी वन सन वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो brisoni@brisoni.com साथ ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा भी अपना अपना साथ गलबात जरूर करते रहा करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ਹੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलट कर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आप सभी सुन रहे हैं जी रेडियो ब्रिस्वानी और एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन लेकर चांदनी का सफर। एंड आई होप कि ये सफर आप सभी का हमेशा की तरह बेहतरीन में बनाने की कोशिश करूंगी और आपका ये समय जो है मॉर्निंग जो है बहुत ही खूबसूरत कहते हैं ना खूबसूरती के साथ निखारने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी ताकि आप सभी का ये दिन जो है बहुत ही प्यारा प्यारा मीठा मीठा जाए। तो दोस्तों जी अगले कुछ टाइम तक मैं आप सभी के बीच लेकर आऊंगी दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी बड़ी खबरें, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन अपडेट्स, बॉलीवुड हॉलीवुड की गॉसिप्स और जी एंटरटेनमेंट म्यूजिक स्पोर्ट्स ना हो तो मजा कहां है। मौसम भी जरूर आपको मौसम का हाल बताएंगे। आखिर में फिर हम एक खूबसूरत से मोटिवेशनल मैसेज की बात करेंगे क्योंकि जी बहुत सारी गॉसिप्स होने के साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया और फिर हम देश और दुनिया की इधर उधर की खबरें इन्फॉर्मेशन जो है अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसके बाद कुछ मोटिवेशनल मैसेज जरूर होना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत कुछ ज्ञात करता है और बहुत कुछ सिखाता है। तो आप चाय या फिर कॉफी तैयार रखिए क्योंकि जी शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। तो आइए फिर सुनते हैं ये गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों, थोड़ी सी दुनिया की हेडलाइंस हम जानने थे कि आखिर दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप में आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में वैश्विक बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इस साल जो है रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों का स्वागत करने की पूरी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल स्टार नेस्टोरी इरान कुंडा के पुर्तगाल के क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन से जुड़ने की काफी खबरें जो है तेज है। अगर ये ट्रांसफर पूरा होता है तो ये भाई उनके करियर का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। अगर हम वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक की तैयारियां तेजी से हो चुकी है स्टार्ट, और सरकार ने 17 यानी कि 17 नए और अपग्रेड किए जाने वाले स्पोर्ट्स वेन्यूज पर काम शुरू होने की जानकारी भी दी है। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने 2032 ओलंपिक के लिए अपना भाई नया जो विजन है वो पेश किया है। इसमें जी नदी में वाटर टैक्सी, नए ग्रीन वॉकिंग और फिर साइकिलिंग ट्रैक, पार्कों का विकास और शहर को और भी आधुनिक बनाने की कई योजनाएं जो है उसमें शामिल है। वहीं पे दोस्तों अगर हम एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें भाई, तो ब्रिस्बेन के क्यू पैक में द लॉयन किंग म्यूजिकल ने टिकट बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आम लोगों के लिए भाई टिकट खुलने से पहले ही प्री सेल में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं पे दोस्तों इस वीकेंड जो है ब्रिस्बेन में लीव फेस्टिवल, ब्लैक डे आउट और उर्जिला कार्सन जो है उसका कॉमेडी शो और कई लाइव म्यूजिक इवेंट्स होने वाले हैं। तो भाई तैयार रहे क्योंकि वीकेंड में आपको मजा आने ही वाला है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड में आखिर भाई क्या गॉसिप देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। आपको इन्फॉर्म करेगी आपकी दोस्त आरजे जाने जैन। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आके सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्मानी में आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर एंड आशा करती हूँ आपको ये म्यूजिक गाना सुनकर अच्छा लग रहा है। तो आइए फिर बॉलीवुड और हॉलीवुड गॉसिप्स जरा हम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे जो हैं वो अपनी आने वाली जो फिल्म है उनकी शूटिंग में काफी बिजी है। आने वाले महीने में कई बिग बजट वाली फिल्में रिलीज होने वाली है, तो आप बस तैयार रहिए। वहीं पर अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया में 2026 के लिए बड़े बड़े म्यूजिक टूर जो है वो लगातार घोषित किए जा रहे हैं, जिससे कि लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी भाई एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम म्यूजिक की बात करें तो अगर आप लाइव म्यूजिक पसंद करते हैं ना दोस्तों, तो आने वाले जो ये महीने हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया में कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है अपने टूर लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, तो म्यूजिक लवर्स के लिए भाई ये साल बेहद ही खास रहने वाला है, मिस मत कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ मैं मिस नहीं करूंगी आपको ये गीत सुनाना, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्मानी।

हाँ जी, तो वहीं पर अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में ध्यान दें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल फैंस की नजरें जो है वो नेस्टोरी इरान कुंडा के संभावित जो यूरोपियन क्लब है उसमें ट्रांसफर पर टिकी हुई है। अगर डील पूरी होती है ना तो ये जो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन में आज मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। सुबह और शाम हल्की हल्की सी ठंडी महसूस होने वाली है जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। अगर बाहर निकल रहे हैं तो भाई थोड़ा सा शॉल स्टोर जरूर साथ में रख लें। वहीं पे दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेजी से विकसित होने में जो शहर है उनको गिना जाता है, यानी कि जो ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया है सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से गिना जाता है। और 2032 ओलंपिक के बाद इसकी जो पहचान है वो दुनिया के फेमस ग्लोबल शहरों में और मजबूत होने की उम्मीद है। जी हाँ, तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है मोटिवेशनल कुछ ज्ञात और ज्ञान देने का, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख हो सकता है, कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उसका भी आंसर इस स्टोरी में मिल जाए कि आप उधर रिलेट कर जाए। तो ये जरूर सुने, क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच लेकर आई हूं, तो ध्यान से जरूर सुनेगा। एक बार दोस्तों मिट्टी में ना दो बीज जो है साथ साथ पड़े थे। पहला बीज बोलता है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, धूप देखना चाहता हूँ, बारिश को महसूस करना चाहता हूँ, अगर मुश्किलें भी आएंगी तो उनका मैं सामना तो कर ही लूंगा। और वो धीरे धीरे अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर निकल आ गया। अब दूसरा बीज जो है उसे देखकर डर गया। उसने सोचा, अगर बाहर आया और कोई मुझे तोड़ दे, अगर मौसम खराब हुआ तो अभी यहीं पर सुरक्षित हूँ, यहीं पे बैठा रहता हूँ। वो मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहा। अब कुछ दिनों बाद एक चिड़िया आई और उसने मिट्टी में पड़े उसी बीज को चुग लिया, यानी कि उठा लिया। यानी दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिली? कई बार ना हम असफलता के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते, लेकिन सच ये है कि जो लोग कोशिश करते हैं ना, उनके पास आगे बढ़ने का मौका होता है, और जो सिर्फ डरते रहते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। तो दोस्तों आज का दिन जो है एक छोटा सा कदम उठाने का दिन बनाइए, क्योंकि हर बड़ा पेड़ ना कभी एक छोटा सा बीज ही था, तभी वो बड़ा हुआ है। तो ये थी आज की प्रेरणादायक बात, जो आशा करते हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए लाइफ में ना कभी भी डरना नहीं है आगे बढ़ने से, होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तो अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए ना। हमें अगर हम सोचे हमें ये प्राप्त करना है, हमें ये चीज चाहिए, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी जरूर मैसेज करके बताइएगा। और अब वक्त हो चुका है आपको टाटा बाय बाय कहने का, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर जाने का सफर ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत एंड हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सुताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम आई। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस में कीटनाशक पर बैन हटा, पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा। फ्रांस की पर्यावरण मंत्री मोनिका बारबू ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये फैसला विवादित कृषि बिल के विरोध में लिया है, जिसमें दो प्रतिबंधित कीटनाशकों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। चीन बोला, भारत ने हमारे 12 नाविकों को बचाया, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। भारत में चीन के नए मिलिट्री डिप्लोमैट यू जियान ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने केरल तट के पास आग लगने वाले मालवाहक जहाज से 12 चीनी नागरिकों को बचाया था, चीन यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। यू जियान ने ये बात नई दिल्ली में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं की कोशिशों से भारत चीन संबंध फिर से सुधार की राह पर लौट आए हैं। जेफरी एपस्टीन से जुड़े फ्रांसीसी शख्स डैनियल सियाद घर पर मरे मिले, लीक फाइल्स में 1000 बार आया था नाम। अमेरिकी अरबपति और दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े फ्रांसीसी मॉडलिंग स्काउट डैनियल सियाद अपने पेरिस स्थित घर पर मृत पाए गए हैं। 69 साल के डैनियल सियाद पर फ्रांस में मानव तस्करी और महिलाओं के यौन शोषण में जेफरी एपस्टीन की मदद करने के आरोपों की जांच चल रही थी। सियाद ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वो जांचकर्ताओं के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सियाद के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज थी, जिनमें दुष्कर्म के आरोप भी शामिल थे। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। कॉकरोच पार्टी पर लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। एक वकील ने सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो सीजीआई ने कहा, हमारा और अपना समय बर्बाद ना करें। बता दें कि 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा था, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, हेड कांस्टेबल की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया, इसमें हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चली। इसी दौरान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जख्मी हो गए, जहां उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। डेविड वार्नर को जेल हो सकती है, ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जुर्म स्वीकार किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अप्रैल में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। 18 अगस्त को उनको सजा सुनाई जाएगी। उन पर 6 महीने का ड्राइविंग बैन, $2200 जुर्माना और अधिकतम 9 महीने की जेल हो सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बात ऐसे है दोस्तों कि हमारे बीच में 10 साल का फासला है तो म्यूजिक का भी ऐसा कुछ इसमें हो रहा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर वेरी क्वाइट, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
1: नो, आई एम लिसनिंग टू यू। आई हैव टू लुक, इफ ओल्ड इज गोल्ड आई हैव टू गिव यू दैट रिस्पेक्ट।
0: ओके, about time you gave me respect.
1: Okay, so seeing that you're playing songs about the weather and that you're on a journey, I thought of this song, which is not old, but...
0: You better specify which journey I am on.
1: But fairly old in my opinion. I mean, old enough to fall there.
0: Yeah, okay. All right.
1: Okay. I think it's a 70s, probably 70s, 80s.

0: That was a really beautiful
1: Well, I
0: song.
1: hope you guys like the song.
0: Of course, everyone likes that.
1: हाँ दोस्तों, रेडियो भिवानी आप सुन रहे हैं और जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में कहाँ वेयर इज इट प्लेस इज लिस्निंग फ्रॉम, लेट मी गो बैक एंड चेक. वाओ, लुक एट द नंबर्स, इट्स रियली
0: टर्की एज वेल. ओह वाओ,
1: टर्की टर्की या
0: जर्मनी,
1: चलो आपका स्वागत है
0: रेडियो
1: बिजबानी. वेलकम टू रेडियो बिजबानी, यू आर लिसनिंग फ्रॉम देयर. अब तो यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे बहुत
0: न्यूजीलैंड,
1: न्यूजीलैंड से भी लोग सुन रहे हैं, क्या बात है. और वेलकम एवरीवन, जर्मनी में भी है, रशिया में भी है. वाओ, वी आर ग्लोबल.
0: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. I hope you're enjoying the selection of songs. We're having a little bit of a battle between the two of us today. But anyway, I hope you like this song.
1: So
0: here.
1: You can send your songs to either Amy, or you can send your songs to me.
0: If you're not happy with the selection.
1: See which ones.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: So in the meantime,
1: okay,
0: here's one of my songs. One of my very favorite songs.
1: Okay.
0: Again,
1: unfortunately. और यार के दोस्तों, हमारे बीच में 10 साल का फासला है.
0: Okay, this is from the 80s. So this was when I.
1: Oh, well, there you go.
0: Hang on, yep. When I was a teenager. Okay.
1: All right. Okay.
0: Yes. Here we go.

0: चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. कुछ ईमेल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, लेकिन पंडित जी का टेक्स्ट नहीं आया मेरे पास. और
1: पंडित जी का टेक्स्ट
0: इज बिटवीन व्हाट अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. आई थिंक ही डजंट नो व्हिच वे टू गो. ऑलराइट, ओके, रेडियो मिज़वानी आप सुन रहे हैं दोस्तों. अच्छा, नंबर है स्टूडियो का, नंबर है 3279-1701, और यहाँ का मेरा नंबर है, आई थिंक आई कैन टेक द कॉल टुडे, इट्स 04300031701. ठीक है, ऑलराइट. इफ यू वांट टू टॉक टू अस या कुछ भी डिस्कशन आप करना चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, व्हाट एल्स?
2: कभी हमने नहीं

देखो तुमसे अच्छा कौन है, अभी आपने सुना राइट? ओके, अच्छा देखो, कहते हैं कि दोस्तों जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं ना, तब तक कोई भी चैलेंज आपसे बड़ा नहीं होता है। तो अपने आप पर भरोसा रखिए और चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो गीत है, एक बार फिर रफ़ी का गाया हुआ, और इस बार जितेंद्र और बबीता के लिए है। मूवी बताइए। जी हाँ, वो भी फर्ज का गाना है।

0: जी हाँ दोस्तों, ये सीन आपको याद होगा, फिल्म फर्ज का गाना था। जी हाँ, कहते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक दिन बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनती है, और अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत हो तो धीरे चलने से भी मंजिल दूर नहीं होती। यू नो, जैसे कि मैं धीरे धीरे जा रहा हूं और मालूम नहीं कहाँ जा रहा हूँ, और लेकिन मालूम है कहाँ से आया हूँ और कहाँ अभी मैं जा रहा हूँ बहुत मालूम नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा इंटीरियर जाएंगे, जैसे मैंने कहा शायद बिगड़न जाएंगे, और हो सका तो वहाँ पर है किसी से जाकर हेलो कर सकेंगे शायद थोड़ी देर के लिए, और
1: So if you are driving,
0: तू अपना गाना बजाओ, then I'll play my गाना.
1: Okay, what was I gonna play? Okay, here we go.

0: और दोस्तों कुछ और न्यूज बताता चलूं आपको. मिडल ईस्ट टेंशन में रिमेन्स हाई. द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान कंटिन्यूज टू अफेक्ट द रीजन विद कंसर्न्स ओवर शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अ वाइटल रूट फॉर ग्लोबल ऑयल सप्लाईज. और ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग अगेन. ब्रेंट क्रूड हैज क्लाइम्ड ओवर अबव US $95 a barrel, driven by fears that the Middle East conflict could disrupt energy supplies. Analysts say this may keep pressure on the fuel prices worldwide. The United States and Saudi Arabia have signed a new civilian nuclear cooperation agreement. The deal is expected to deepen energy cooperation, but has also prompted international discussion about nuclear safeguards in the region. As you know, Trump is very close to Saudi Arabia, right? You guys know that. Yeah. The World Health Organization says global road deaths have fallen by 21%, but it is urging government to strengthen road safety. Yeah, 21%, but urges government to strengthen road safety measures to save even more lives. Scientists continue to warn about climate and environmental risk. New reports highlighted growing concerns about extreme weather, heat waves, and the long-term health of ecosystems such as the Great Barrier Reef. So, ये जो global warming है, इससे बहुत बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है. Can damage our Great Barrier Reef too. Anyway, that was a little bit of news.
1: Yep.
0: और इस समय चलिए 24 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग.
1: ओके.
0: शशि कपूर और राजश्री के लिए, ठीक है, ए फिल्म 1967 मूवी. सी आई एम प्लेइंग ऑल इज गोल्ड, राइट? यू प्लेइंग ऑल इज गोल्ड. और किसने गाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलो सुन लेते हैं.

0: और कहा गया है दोस्तों कि ऐसा मेरे गुरु जी कह रहे थे कि पीस डजंट कम फ्रॉम द प्लेस यू गो, इट कम फ्रॉम द माइंड यू
1: फ्रॉम द माइंड यू
0: कैरी.
1: कैरी.
0: आपका माइंड,
1: हाँ हाँ
0: पीस
1: हाँ
0: बिगिंस देयर, डजंट इट?
1: यस इट्स व्हाट्स
0: ऑलराइट. आगे
1: दे से हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम यू
0: फ्रॉम विद इन.
1: फ्रॉम विद इन. नोबडी एल्स कैन मेक यू हैप्पी. You can't rely on anyone else for your happiness. That's what they say.
0: They can make you laugh.
1: They can make you laugh. But in
0: happiness comes
1: order
0: from
1: to be,
0: inside.
1: yeah, from within you, yes.
0: Yeah. That is so true, Abita. It comes from within.
1: Yeah, you've got to be.
0: तो आप लोग सब खुश रहिए. आज
1: Yes.
0: का जो दुख है कल में खुशी में बदल जाएगा दोस्तों, होता कि
1: Definitely.
0: नहीं?
1: हाँ.
0: कभी कभी बहुत दुख में रहते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं. तो आई थिंक इट कम्स अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन दिस थिंग्स डोंट मैटर, यू नो व्हाट आई मीन. टू मच ऑफ वर्ल्डली प्रेशर, टू मच ऑफ ऑल दिस थिंग्स मेक यू हैप्पी और सैड. बट एक समय आता है दोस्तों जब ये सब कुछ नहीं मीन, कोई मायना नहीं रखता है. ना आप खुश रहेंगे ना आप सेड रहेंगे, बस ठीक ही रहेंगे. समझ गए आप लोग? तो चलो
1: At
0: आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं.
1: what age does that happen?
0: इट डिपेंड्स, एवरीबॉडी डिफरेंट, एवरीबॉडी. वेल देयर आर फोर स्टेजेस, बट जब वो स्टेज आ जाता है कि व्हेन यू आर नॉट इन वांट एनी मोर,
1: Yep.
0: यू जस्ट हैप्पी हैप्पली क्रूजिंग अलोंग, यू नो,
1: Yeah, yep.
0: कोई ख्वाहिश नहीं है कुछ और चीज की या कुछ ऐसा कुछ नहीं है. आप जस्ट यू जस्ट क्रूजिंग अलोंग
1: Yep. Okay.
0: एंड यू जस्ट एंजॉइंग द
1: You just
0: सराउंडिंग, एंजॉय
1: content
0: एवरीथिंग, यू नो,
1: basically.
0: एज इट कम्स, टेक इट एज इट कम्स, यू नो. और आधा जो चीज है, जो ये दुख जो हमारे आता है, ये दिस इज probably from wanting things in competition with other people, ego से आता है, और ये सब चीज और लेकर आता है आपके लिए. अगर ये सब चीजों चीजें से आप हट जाए, और वो आप हटेंगे एक दिन जब थोड़े एज होने लगेंगे आप, तो यू नो यू फील एज इफ आपका लाइफ पूरा भर गया है, भरपूर लाइफ, ना कुछ और चाहते हुए भी, इफ यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो यू जस्ट हैव, नथिंग विल बोदर यू, नथिंग शुड बोदर यू. चाहे कोई कुछ कहे, कहने दो, कहते हैं तो कहने दो,
1: लाइक आई सेड
0: यू
1: अर्ली
0: नो, दोस थिंग्स शुड
1: व्हेन
0: मैटर, बिकॉज यू शुड नो योर सेल्फ,
1: इफ यू आर
0: व्हाट यू
1: कंटेंट
0: आर, हु यू
1: विदिन
0: आर, वे यू आर गोइंग, एंड सो दोस थिंग्स शुड नॉट मैटर एनी मोर, राइट? एंड व्हाई शुड एनी बॉडी थॉट शुड मैटर? बिकॉज यू आर ऑन योर ओन जर्नी, यू नो व्हाट यू वांट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, सो देयर इज नो नीड फॉर ऑल दैट, यू नो. एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ता है दोस्तों, शायद हमारे हमारे में कहा भी गया है कि जो डिटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, इससे जब हम थोड़ा दूर होने लगते हैं दोस्तों, तो किसी तरह का भी अगर डिटैच हो जाए आप, तो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे और वर्ल्ड को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. एंड मे बी यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर, एंड मे बी यू लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ, यू नो दैट. अभी यंग लोगों के लिए सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यू विल कम टू एन एज व्हेन यू रियलाइज दैट. या तो
1: यू आर योर
0: ऐसे ऐसे बातें हैं दोस्तों लाइफ में.
1: यू आर योर बेस्ट कंपनी.
0: एग्जैक्टली. किसने भेजा मेरे पास, द मोस्ट वंडरफुल प्लेस टू बी इन द वर्ल्ड इज इन समवन्स थॉट्स, इन समवन्स हार्ट एंड समवन्स प्रेयर्स. देयर यू गो. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अगला गीत, योर सॉन्ग प्ले
1: ओके
0: कर दो आप प्लीज.
1: हियर वी गो.
0: ओके.

0: Okay.
1: Yes, I'm here.
0: 8:36 already.
1: Okay, time.
0: Time's marching.
1: किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों, और जो कुछ करना है आज कर लो अभी अभी, इसको टालो मत, ठीक है? और देखिए टाइम भी बहुत जोर से जा रहा है, और ये गाना शायद मैंने पहले भी बजाया इस हफ्ता, लेकिन एक बार फिर

0: राइट, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल
1: और
0: ब्यूटिफुल सॉन्ग.
1: प्रिय दोस्तों, समय थोड़ा कम, हमारे साथ पंडित जी आ गए हैं. सॉरी अमिता. पंडित जी, राम राम, सीताराम.
2: सीताराम, जतीश जी, अमिता जी, आप कैसे हो? हम तो
0: हरिओम
2: दोनों
0: पंडित
2: ठीक
0: जी.
2: है पंडित जी. अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा एक सामाजिक सूचना के साथ आए हैं.
1: हाँ बोल दो,
2: हम बोला
1: बता
2: जब
1: दो.
2: तक रेडियो चल रहा है, श्री सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ रिव्यू हो रहा है और मेंबर से जरूर आग्रह है कि आप लोग कुछ ना कुछ उसमें अपना जो है बात डाले, ताकि हमारा जो संस्था है और मजबूत हो, अच्छी तरह से चले. और यही हमारी सूचना है, जो लोग सुन रहे हैं अपने यार दोस्त से बताएं कि सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू है, सेक्रेटरी से पा सकते हैं उसका, या और मेंबर से भी बहुत लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू वाली गया होगा, तो जरूर आए और उसमें भाग ले. और फ्राइडे को क्लोज हो रहा है सबमिशन, तो
0: अच्छा,
2: जरूर सूचना. हम परमा जी के साथ है, हम एक हफ्ता से लगभग बोल रहे हैं कभी कभी, तो फ्राइडे को क्लोज हो रहा है, तो जरूर आए, उसमें भाग ले और अपना कुछ
1: अच्छा,
2: सजेशन वगैरह दे.
1: ओके ओके.
2: धन्यवाद जतीश जी.
1: अच्छा जी, धन्यवाद. थोड़ा देख लेना
0: पंडित
1: पंडित जी,
0: जी, हैंग
1: मेरे
0: ऑन
1: और नहीं आ रहा है. बोलो.
0: जस्ट.
2: अच्छा अच्छा देखेंगे. हाँ
1: अमिता कुछ कहना चाहती है. हाँ
2: जी बोलिए.
0: फ्राइडे मीनिंग कल,
1: फ्राइडे यानी कल, इज इट पंडित
2: कल
1: जी?
2: कल क्लोज हो रहा है
1: हाँ कल. हाँ
2: सबमिशन जी.
0: ऑलराइट.
1: ओके, तो ठीक है.
2: अच्छा
1: थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: पंडित जी.
2: आपको. थैंक यू जतीश जी,
1: ओके.
2: अमिता जी. हम गाने सुन रहे हैं, लगता है जब आपका
1: अच्छा.
2: कंप्यूटर थोड़ा प्रॉब्लम करता है, गाना थोड़ा भाग पड़ता है,
1: तो पंडित जी
2: जैसे
1: आपका,
2: ना
1: अच्छा अच्छा
2: फास्ट
1: अच्छा पंडित जी, आपको स्पॉट में रखना चाहूंगा.
2: जी
1: किसका गाना आपको अच्छा लगता है? और हमारे
2: दोनों
1: जब
2: है, क्योंकि आप लोग का थीम जब ना चलता है एक लाइन,
1: अरे
2: तो दोनों
1: मार
2: आप
1: दिया,
2: पकड़
1: अरे
2: लेते हैं उसी लाइन पर.
1: पंडित जी पॉलिसी मार दिया, पॉलिसी.
0: सी पंडित जी इज ट्राइंग टू
2: देखो,
0: बी
2: हमारा पॉलिसी है सभी
0: डिप्लोमेटिक.
2: को खुशी रखना ना. दोनों दोनों का बराबर है, कभी कभी 51-49 हो जाता है, लेकिन
1: अच्छा चलो ठीक है,
2: चलो दोनों
1: पर
2: दोनों
1: याद
2: ही
1: रखना
2: बराबर है.
1: पंडित जी, पंडित जी आप पंडित हो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो.
2: नहीं नहीं झूठ
1: तो
2: नहीं
1: आप
2: बोल रहे.
1: हम तो छोटा मोटा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोल
2: नहीं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, कभी कभी 49-51 होता है, लेकिन चलता है
1: हो. जी,
2: जी.
1: चलो बहुत अच्छा लगा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको.
2: अच्छा जी
1: अच्छा जी,
2: ठीक है,
0: हरिओम पंडित
2: चलते
0: जी,
2: हैं, हम तो
1: हरिओम.
2: सुनते रहते हैं आपको.
1: जी हाँ,
2: धन्यवाद. जय हो,
1: अच्छा जी, जय
2: जय जय हो.
1: जी. हाँ दोस्तों, पंडित जी से भी आप हम कुछ बातें सुन रहे थे. और भूलना मत, कल सबमिशन लास्ट है, तो आप जाइए, इसमें भाग लीजिए. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान. और बस समय हो गया है, और अगला जो गीत है, अमिता बजाइए प्लीज, यू कैन
0: जी,
1: टेक
0: आई
1: ओवर
0: वाज जस्ट
1: फ्रॉम हियर.
0: वेटिंग.
1: ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान. और बस समय हो गया है, और अगला जो गीत है, अमिता बजाइए प्लीज, यू कैन
0: जी,
1: टेक
0: आई वाज
1: ओवर
0: जस्ट
1: फ्रॉम हियर.
0: वेटिंग.

0: देखिए
1: देखिए, समय भाग रहा है दोस्तों, रुक नहीं रहा किसी के लिए। लेकिन चलिए, जैसे मैंने कहा, अभी यहाँ अकेला हूँ मैं इस दुनिया में दोस्तों। कोई साथी है तो मेरा साया है, और सूरज भी निकला हुआ है। तो चलिए इस गीत को सुन लेते हैं समय। इस गीत के बाद में हम लगता है शायद ये लास्ट गाना हो।

0: जी हाँ दोस्तों, अकेला हूँ मैं, लेकिन आप लोग तो साथ में होते ही हैं। और चलो, अब समय हो चुका है यहाँ से जाने का, और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ थोड़ा सा छेड़खानी हुई है आज, और आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल का प्रोग्राम जो है, देखते हैं क्या होता, और फिर देखेंगे दोस्तों। अगर हम फिर मिलेंगे
1: मंडे,
0: मंडे को,
1: हाँ,
0: सोमवार
1: सोमवार.
0: को, ठीक है?
1: तो
0: ओके
1: हैव अ ब्यूटिफुल
0: ओके
1: वीकेंड
0: ऑलराइट,
1: एंड
0: हैव अ
1: नमस्ते
0: ब्यूटीफुल डे,
1: एवरीवन.
0: नमस्ते,
1: टेक केयर,
0: बाय बाय
1: बाय.

मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। एक नई प्यारी सी सुबह जो है आपके साथ उम्मीदों से भरकर आ गई है। और ये उम्मीदें हैं जिंदगी की, ये उम्मीदें हैं सांसों की, ये उम्मीदें हैं अपनों के साथ की, ये उम्मीदें हैं सक्सेस की, बहुत सारी उम्मीदें। इनफैक्ट जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, हासिल करना चाहते हैं, वो सब उम्मीदें लेकर आया है ये नया दिन आपके लिए। सो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी जिंदगी का ये प्यार भरा दिन। इस दिन को बेहतर बनाइए, खूबसूरत बनाइए। और इस दिन की शुरुआत में आपका साथ निभाने के लिए एक बार फिर से हाजिर है आपकी सताक्षी आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत हमारे ब्रेकफास्ट शो की और एंजॉय करते हैं इस अगले ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

0: वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. आप एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस. दोस्तों आपके साथ सताक्षी है. ये वक्त उनके लिए बहुत ही खास हम बनाने वाले हैं जो हमारे प्यारे से लिसनर्स हैं और आज जिनके लिए ये वक्त बहुत ही खास है. जी हाँ, जिनका हैप्पी बर्थडे है. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ईश्वर करे कि आपका जो जिंदगी के साथ साथ है वो यूं ही बढ़ता रहे और आप जिंदगी के हर सफर को हंसते हंसते पार करते रहे. जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और एक दूसरे का हाथ थाम कर जिंदगी के सफर को फेस करते रहिए. और हाँ, एक दूसरे के टफ टाइम में जरूर एक दूसरे के साथ खड़े रहिए. जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट. आप सबके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक. स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी.
1: इश्क और मोहब्बत की दुनिया में रुतबा है मेरे प्यार का, चारों तरफ जलवा है मेरे यार का.

लाइफ में ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लेसिंग्स जो है वो हर रोज आपके लिए किसी मेडिसिन की तरह काम करती हैं। अब देखिए ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब आप ओवर थिंक करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, है ना, तो ब्लेसिंग्स ही वहां पर आपको संभालती हैं। क्योंकि ओवर रिएक्ट जब आप करते हैं या ओवर थिंक जब आप करना शुरू करते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड तो गया काम से, उसका कुछ हो नहीं सकता। और एक बार पीस ऑफ माइंड गया काम से, उसके बाद आपकी हेल्थ इफेक्ट करना शुरू कर देती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती है। हमारे ऊपर हमारी पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा दोस्तों नेगेटिव एनर्जी हमेशा हावी रहती है, क्योंकि वो इजी होती है ना, उस माइंड को उसको फेस करना आसान हो जाता है। और जो वो करवाना चाहती है, यानी हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो वो करवाना चाहते हैं हमारे माइंड से, वो वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। उसके लिए बहुत इजी है वो इमेजिनेशन को फॉलो करना जो नेगेटिव है, नेगेटिव पैटर्न्स पे ब्रेन बहुत जल्दी वर्क करता है। वहां पर भी आपके साथ अगर अच्छे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको अच्छा चाहते हैं, वो बहुत काम आती हैं, और आप उस सिचुएशन से कोप अप करके लाइफ में आगे आ जाते हैं। तो लाइफ में ब्लेसिंग्स लेते चलिए और अपने पीस ऑफ माइंड का बहुत ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे आपका पीस ऑफ माइंड है, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ हो ही नहीं सकता। ये अगला ट्रैक आपके लिए है, इसे भी सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

मैं ये कहती हूँ दोस्तों कि प्रॉब्लम तो सबकी जिंदगी में है, परेशानियां तो हम सबकी जिंदगी में आनी है, लेकिन परेशानियों को आप जितनी ताकत देते हैं ना, वो उतनी स्ट्रांग होती जाती हैं और फिर वो आपके पीछे पड़ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि आप थोड़ी ना उनको ताकत देते हैं, देते हैं ना, हम सबसे ज्यादा अपनी परेशानियों को ताकत देते हैं। ओवरथिंक इतना करते हैं उस एक छोटी सी बात के बारे में सोच के कि वो पहाड़ बन जाती है और पहाड़ बनकर हमारे सामने डटकर खड़ी हो जाती है। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर फियर में रहते हैं, एक डर रहता है हमारे अंदर, कैसे जाएगी, कैसे होगा, अगर ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में बनी रही तो फिर कैसे घर चलेगा, क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर हमारे अंदर एक फियर रहता है। और परेशानियों की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ही हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम कदम ही नहीं उठा पाते, अभी मेरा वक्त अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, है ना। सो, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती जाती हैं जितना आप उनको एनर्जी देते जाते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी एनर्जी देना बंद कीजिए, उन्हें नॉर्मल डेज की तरह, नॉर्मल सिचुएशंस की तरह हैंडल कीजिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितना सुकून आता है। ये एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए अभी और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: वेलकम बैक. इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. इट हैपेंस में हो रही है आज एक बार फिर से आपके साथ आपकी बातें. लेकिन अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में. जी हाँ, आइए देखते हैं आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स सताक्षी कौन से लेकर आई है आपके लिए गानों की हैट्रिक में. और ये रहा पहला ट्रैक.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: गानों के हैट्रिक इटहैपेंस में सुन रहे हैं आप, और इटहैपेंस के गानों के हैट्रिक के सफर में आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।

गानों की हैट्रिक में आइए सुनते हैं ये आज का लास्ट ट्रैक और इसके उस पार इट हैपेंस में ढेर सारी बातें और हमारा आपका साथ चलता रहेगा जारी रहेगा। सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी पर।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: ਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

अच्छा सोचिए तब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ भाई, पहले लोग कहते भी थे ना कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेकिन हम अच्छा सोचते कहाँ हैं? हम तो किसी ना किसी बात को लेकर नेगेटिव थॉट पैटर्न में ही पड़े रहते हैं। हम तो किसी ना किसी बात को लेकर परेशान ही रहते हैं, और परेशान भी हमेशा नेगेटिव बातों के साथ ही रहते हैं। देखिए, अगर वाकई आप लाइफ की हैप्पीनेस चाहते हैं तो अपने थॉट्स की क्वालिटी पर फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे, आप वैसे ही होते चले जाएंगे, और अपनी लाइफ में वही सारी चीजें मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। सो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। बुरा सोचेंगे तो डेफिनेटली बुरा ही होगा। ये अगला ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए, और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM मेरे साथ।

अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मैंने लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं किया, मैंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, मुझे जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, जिंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगर इस तरह का कोई भी थॉट आपका है, अगर ऐसी कोई भी सोच आपकी है, तो आप सबसे कहना है कि ये आज का दिन जो है ना, ये परफेक्ट दिन है। इसे जो आप करना चाहते हैं ना, वो करके जी लीजिए। हाँ, जो भी आप लाइफ में बनना चाहते थे, करना चाहते थे, आज अभी इसी वक्त से शुरुआत कीजिए। ये एक शुभ मुहूर्त है, और इससे बड़ा शुभ मुहूर्त आपकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि आज आपको वो दिन पूरा करने का, जो भी आप करना चाहते थे, किसी दिन किसी समय वो दिन वो काम पूरा करने का ये मौका मिल गया है। सो यस, इस बात का मजा लीजिए और इसे सेलिब्रेट कीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इसी बात पर एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रजवाणी, सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660